मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी कि 1143 किलो हर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 103.5 मेगा हर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के अनुसार आषाढ़ मास का 13वां दिन, तदनुसार 4 जुलाई 2026। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:58 और 50 सेकंड हुए हैं। अब हमारे आज के प्रसारण आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब समय है हिंदी समाचारों का। हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। हिंदी समाचारों के तुरंत बाद एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का रिले किया जाएगा। हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जा रहे हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125A के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सानंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री

0: 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन की निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि E20 यानी 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले जा रहे राउंड ऑफ 32 के मैच में अर्जेंटीना और कार्बो वर्डे 3-2 गोल की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है आज का चिंतन। मनुष्य किसी से आहत नहीं होता, अपनी अपेक्षाओं से होता है, फिर चाहे वह खुद से हो या किसी और से। ये था आज का चिंतन। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

भगवान की अनुकंपा के सहारे ही मनुष्य का जीवन सुचारू रूप से चलता है और अनुकंपा दैव्य गुणों के अपने भीतर विकास करने से प्राप्त होती है। दैव्य गुण मनुष्य के भीतर नेकी होनी चाहिए, खुद का सम्मान होना चाहिए, दूसरों की जैसे पहले खुद पर विजय प्राप्त करनी होती है, तभी इंसान इंसान बनता है। सुनते हैं श्री हनुमान चालीसा।

मनुष्य केवल अपनी भावनाओं का सगा होता है। जहाँ भावनाएं आहत होने लगती हैं, वहाँ से विमुख होने लगता है। यही बात परमात्मा पर भी लागू होती है। परमात्मा भी भावनाओं के सगे होते हैं, इसलिए अपने इष्ट को सबसे पहले अपना मित्र बनाएं और फिर एक मित्र की भांति उससे संवाद करें, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से। फिर वह एक सखा की भांति आपको दर्पण की तरह सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखलाएगा और जीवन की राह को सुगम बनाएगा।

गरीबी से बुरा हाल, धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका, ए किधर जाता है। सुदामा ने प्रार्थना की, ए

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना, प्रभु भक्ति में डूबते हुए। कार्यक्रम में सुनते हैं आज के लिए अंतिम भजन इस आरती के रूप में।

परम शक्ति आप सभी श्रोताओं के परिवार में, समाज में शांति बनाए रखे, सुकून बनाए रखे और आप सभी आए दिन तरक्की करते रहें, ताकि आपके परिवार के साथ साथ पूरा देश, पूरा विश्व मजबूती को प्राप्त करे। इसी भाव के साथ कार्यक्रम वंदना यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान।

भारद्वाज मुनि को भरत के प्रति श्री राम के स्नेह का पूरा ज्ञान है। इसी आधार पर वे भरत को विचलित देख सांत्वना देते हुए आश्वस्त करते हैं कि श्री राम के लिए उनके समान प्रिय कोई दूसरा नहीं है। उनका तो ये कहना है कि भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए ही श्री राम के प्रेम ने भरत रूपी शरीर धारण किया है। भरत का यश निर्मल नवीन चंद्रमा है। चंद्रमा तो अस्त होता है, प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता है, किंतु भरत का यश रूपी चंद्रमा कभी अस्त नहीं होगा। जगत के आकाश में वो दिन दूना बढ़ता रहेगा। भरद्वाज जी कहते हैं, हे भरत, तुम्हें व्यर्थ ही ग्लानि हो रही है। मैं जगत से उदासीन तपस्यारत हूं। मुझे श्रीराम सीता और लक्ष्मण के दर्शनों का सुयोग प्राप्त हुआ, किंतु अपने सत्कर्मों का सबसे बड़ा परम फल मुझे आज तुम्हारे दर्शन से प्राप्त हो रहा है। भरद्वाज मुनि के वचन सुन पूरी सभा हर्षित हो गई। देवताओं ने साधु साधु कहकर पुष्प वृष्टि की।

0: अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस गान। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि की बातें।
1: किसान बहनों और भाइयों, राम राम। वे कृषि की बातों में जिक्र करेंगे जैविक खेती की उपयोगिता के बारे में। भाई, जब भी हम बड़े बुजुर्गों के साथ बैठा हाँ तो बार बार यो जिक्र चल रहा है कि भाई पहले वाला खाना नहीं रहा। और भाई, ग्रामीण जीवन का जो भूतकाल हम देखा, बुजुर्गों के साथ बैठा जो उनके अनुभव सुने हैं, ना किसी डॉक्टर के पास भी गामा में कोई भी पी मापन का यंत्र था, ना कोई भी शुगर की समस्या थी, ना कोई हार्ट की दिक्कत थी। और आज हम देखें कि हजारों जो बीमारी हैं, कोई ईसा बिरला होगा जो निरोगा होगा। और इन सब के कारण है कि जो भी हम धरती माता तान ले रहे हैं, रासायनिक उर्वरक डाल रहे हैं बेहिसाब, तो अंधाधुंध हम जो रासायनिक छिड़काव कर रहे हैं उनके चलते जो हमारी जमीन है, धरती माता है, उसकी जो उर्वरा शक्ति है, उसकी जो ताकत है, उसके अंदर जो कार्बनिक पदार्थ हैं, जीवांश की जो मात्रा है, वह घट गई। अगर हम धीरे धीरे जो जैविक तरीके हैं, जो प्राकृतिक तरीके हैं, उनके साथ जुड़ें, फिर भी जो हमारी धरती की उर्वरा शक्ति वह भी बढ़ेगी, जीवांश की मात्रा भी बढ़ेगी। और भी जो भी हम धरती माता दर निपजे उड़ा भाई, चाहे फल फ्रूट की हम बात करें, अन्न हम खाऊँ हैं, वो निरोगा मिलेगा और उसमें जो जहर का अंश है वो नहीं रहेगा, बल्कि वो जो नाज है, जो जीवाणु खाद्य है भाई हमने पैदा कराया है, वो भी अमृत के समान हमारे शरीर में लगेगा। आज भी हम देखा कि जो बुजुर्गों की जो नस नाड़ी है बड़ी मजबूत है, चेहरे की चमक उनकी देखा हाँ, एक चेहरे की जो आभा है, कांति है, वो आज भी नुक्के की नुपड़ी है। और हम अपने कान देखा तो भाई सबका चेहरा ऐसा लगे जो मुरझा रहा है। तो भाई इसके लिए जो प्राकृतिक तरीके हैं, सबसे पहले जो हमारे कल्चर टीके हैं, राइजोबियम टीका है, एजेक्टोबैक्टर टीका है, और इसके साथ में फास्फो टीका है, और इसके साथ में भाई आजकल तो नाइट्रोजन के टीके हैं वो भी आने लगे। दूसरा, जो हमारी धरती की उर्वरा शक्ति है, कार्बनिक पदार्थ हैं, उन बढ़ाने खातर जो हरी खाद हैं उनका चुनाव हम करें। और भी हरी खाद खातर जो हमारी दलहनी फसलें हैं उनमें एक प्राकृतिक गुण है, वो भी वायुमंडल से नाइट्रोजन लेके कुछ तो आप खा ले हैं और कुछ जो हमारी जमीन है, धरती माता, उसमें छोड़ते हैं, जो हमारी अगली फसल है उसमें नाइट्रोजन की जो है कटौती उसमें हम कर सके हैं। और भी जीवांश की मात्रा बढ़ाने खातर गोबर की गली सड़ी खाद है।

0: कंपोस्ट की खाद है, वो भी मेरी नाम तय बिक जाए है और हमारा खुद का भी काम चल जाए। अगर केंचुए बच जाए हैं तो दूसरे भाई ने भी हम वो बेच सकें, यानी इसमें एक व्यवसाय का रूप भी हम कर सके हैं और अपने खेता खातर भी वही जो देसी खाद है उनका काम हम चला सके हैं। बाकी जो देसी तरीके हैं जीव अमृत बनाने का है, भाई गौमूत्र है, गोबर है, गुड़ है, उन्हें साड़ के हम कर सके हैं। मिट्टी भी इसमें मिलाई जाए है, दाल का आटा भी इसमें मिलाया जाए है। संजीवत जो प्रक्रिया है जिसमें भाई 100 किलो गोबर हम ले सके हैं, 100 लीटर गऊ का मूत्र है, 500 ग्राम गुड़ है, ड्रम में इसका घोल हम बना ले, 300 लीटर जो पानी है उसमें घोल बना के और फिर इसने भाई 10 दिन तक आछी डाल उसमें भाई सड़ने दें, हिलाते रहें और फिर उसके बाद में भाई 1 किलो ये हम ले लें, 19 किलो 20 किलो पानी ले लें और उसमें घोल बना के और फिर इसका फसला में भी हम छिड़काव कर सकें हैं। सिंचाई के साथ में नालियाँ के माध्यम से भी हम भी अपने खेत में छोड़ सकें, जिससे जीवांश की मात्रा बढ़ेगी और फसला में जो मित्र कीट है हमारे वो भी पैदा हो जाएंगे, क्योंकि प्रकृति के पास एक संतुलन है कि भाई कीड़े ने कीड़ा खा है तो शाकाहारी कीट हैं वो हमारे दुश्मन हैं और जो मांसाहारी कीट हैं वो भाई हमारे मित्र हैं। जिस तरह की बीटल की हम बात करा, विशेषकर सर्दियाँ मौसम में बीटल देखा हाँ, बिरसमा के ऊपर जिसने देसी भाषा में बिट्टू कहते हैं, और जो अरेतेला है रस चूसने वाले कीड़े के अंडे वो खा है, गादर की सुंडी है जिसमें जोड़े कीड़े के अंडे रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र कीट हैं जो रासायनिक छिड़काव के कारण, रासायनिक उर्वरा की ज़्यादा हमने भाई अधिकता करी उसके कारण वो खत्म हो गए, शाकाहारी कीट हैं वह बच गए। यदि हम देसी नुस्खे के साथ में जो जैविक खाद है उनका उपयोग करें तो फिर हम भाई हमारा बहुत सारा इसमें खर्चा बचेगा। नीम पाधारित जो दुआई हैं उनके साथ हम जुड़े तो भी एक बार फिर जो हमारा नाज है अमृत के समान हो जाएगा और हमारा स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा। तो भी कृषि की बातों में इतना ही, आपका दिन शुभ हो।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम कृषि की बातें, ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: इयम आकाशवाणी, संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका ऋचा झा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य राजस्थान गुजरात राज्ययोः एकदिवसीय यात्रायै प्रस्थास्यति। प्रधानमंत्री सर्वप्रथमं राजस्थानस्य यात्रां करिष्यति, यत्र असौ अद्य प्रातःकाले जोधपुर विमानपत्तनस्य नूतन टर्मिनल इति भवनस्य उद्घाटनं करिष्यति। 80+ 400 कोटि रूप्यकाणां इयं परियोजना वार्षिकं 20 लक्ष यात्रिणः संचालयितुं परिकल्पितमस्ति। असौ जोधपुरे संशोधित उड्डयन योजनायाः शुभारम्भोऽपि विधास्यति। अस्याः योजनायाः उद्देश्यं विमानन आधारित विकासस्य अग्रिमचरणस्य गतिं वर्धयितुमस्ति। एतदनन्तरं श्रीमोदी बालोतरा नगरस्य यात्रायां भविष्यति, यत्र असौ अद्य मध्याह्ने प्रायः 6,000+ कोटि रूप्यकाणां विकास परियोजनानां लोकार्पणम् उद्घाटनम् आधारशिलाञ्च स्थापयिष्यति। श्रीमोदी राजस्थान प्रशासनस्य विभिन्न विभागेषु नियुक्तेभ्यः प्रायः 45 युवकेभ्यः नियुक्तिपत्राणि अपि प्रदास्यति। अनन्तरं सायंकाले प्रधानमंत्री मोदी गुजरातस्य यात्रां करिष्यति। पाकिस्तान देशात सीमापारस्य भयोत्पादनस्य निरन्तर प्रयोजकत्वस्य प्रतिक्रियारूपेण सिन्धु जलसन्धिः स्थगितः अस्ति। गतरात्रौ नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवदत् यत् सिन्धु जलसन्धि विषये भारतस्य स्थितिः सुसंगता अस्ति। सः अवदत् यत् पाकिस्तानदेशः सीमापारस्य भयोत्पादनस्य समर्थनं विश्वसनीयरूपेण अपरिवर्तनीयरूपेण च त्यक्तव्यम्। तीस्तानद्याः समग्र प्रबन्धन पुनर्स्थापन परियोजनायाः विषये श्रीजायसवालः बांग्लादेशस्य विकास साहाय्यं प्रति भारतस्य दृष्टिः अपि प्रकटितवान्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः कृषि कृषक कल्याण मन्त्री शिवराज सिंह चौहान च एल नीनो इत्यस्य कारणेन देशस्य केषुचित् भागेषु सामान्यात् न्यूनवृष्टेः तस्य प्रभावस्य च स्थितिं समीक्षितवन्तौ। श्रीशाहः सभायाम् अवदत् यत् एल नीनो इत्यस्य कारणेन देशस्य केषुचित् भागेषु सामान्यात् न्यूनवृष्टिं, संभावित अनावृष्टेः स्थितिं च प्रशासनं निरन्तरम्

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे, जिसकी कुल लागत 13,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन के निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल तक $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10 से 11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे

0: और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने के लिए काम कर रहे थे। जांच में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन से फंडिंग का भी पता चला है। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने सरकार और भारतीयों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Rajasthan and Gujarat today. The Prime Minister will first travel to Rajasthan, where he will inaugurate the new terminal building of Jodhpur Airport this morning. The project, worth 480 crore rupees, is designed to handle up to 20 lakh passengers annually. He will also launch the modified Udaan scheme in Jodhpur. The scheme aims to accelerate the next phase of aviation-led development. Thereafter, Mr. Modi will travel to Balotra, where he will dedicate, inaugurate and lay the foundation stone for development projects worth approximately 1.06 lakh crore rupees this afternoon. The Prime Minister will dedicate India's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex to the nation at Pachpadra in Balotra. Developed as a joint venture between Hindustan Petroleum Corporation Limited and the Government of Rajasthan, the 9 million metric tons per annum greenfield refinery cum petrochemical complex has been established with an investment of over 79,450 crore rupees. Later in the evening, Prime Minister Modi will travel to Gujarat, where he will inaugurate the CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility at Sanand. Union Home Minister Amit Shah and Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan reviewed the situation regarding below normal rainfall and its impact in certain parts of the country due to El Nino. Senior officials from various ministries and departments, including the Union Home Ministry and the Union Agriculture and Farmers Welfare Secretary, were present at the meeting yesterday. During the meeting, Mr. Shah said the government is continuously monitoring the situation regarding below normal rainfall and potential drought conditions in certain parts of the country due to El Nino. He directed the Ministry of Agriculture and all related ministries to remain vigilant and coordinate with state governments to advise farmers on the appropriate crops to sow. The India Meteorological Department or IMD has issued a red colour warning for heavy to very heavy rainfall, with isolated extremely heavy rainfall over Gujarat, Konkan, Goa, Madhya Maharashtra, West Madhya Pradesh and Odisha for today. Heavy to very heavy rainfall conditions are expected over East Rajasthan, East Madhya Pradesh, coastal Karnataka, Telangana and Vidarbha for next 2 days. Gujarat Anti-Terrorist Squad has arrested 8 people associated with the Pakistan-based banned terror outfit

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी कि 1143 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। शाम 5:10 पर विशेष सभा में आज आप सुनेंगे प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। देर रात 9:30 पर कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। साहित्य भारती पत्रिका, साहित्य भारती, संस्कृति भारती पत्रिका, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका, राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका और राष्ट्रीय युवा पत्रिका। 13:10 आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आज रिले किए जाएंगे।

आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आज आप सुनेंगे प्रातः 7:15 पर और रात 8:25 पर कार्यक्रम सुगम संगीत, सुबह 7:30 पर कार्यक्रम सुबह सवेरे, प्रातः 9:00 कार्यक्रम सबरस, दोपहर 1:10 पर कार्यक्रम चित्रपट संगीत, फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 7:30 पर और एक फिल्म से कार्यक्रम सुनेंगे रात 9:15 पर। कार्यक्रम लोक संगीत आज आप सुनेंगे प्रातः 8:30 पर, दोपहर 12:30 पर कार्यक्रम पसंद अपनी अपनी, शाम 5:30 पर कार्यक्रम युवा संसार में आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के बारे में बातचीत और साथ ही होंगे कुछ रोजगार समाचार, दोपहर 2:30 पर कार्यक्रम खेत खलिहान में आज विषय रहेगा पशुधन की देखभाल, शाम 6:20 पर कार्यक्रम कृषि जगत में आप सुनेंगे कृषि यंत्रों की देखभाल के बारे में बातचीत और साथ ही वार्ता रहेगी मूंगफली की उन्नत किस्मों और काश्त के बारे में, वार्ताकार रहेंगे डॉक्टर अशोक, शाम 7:00 कार्यक्रम ग्रामीण संसार में

आप सुनेंगे पर्यावरण संरक्षण के बारे में बातचीत और साथ ही होगा हरियाणवी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

कार्यक्रम सुगम संगीत में आज आपने सुना कलाकार सुरेश कुमार शर्मा को। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है समसामयिक चर्चाओं पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुबह सवेरे कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे अपने जीवन में हम उत्साह कैसे बरकरार रखें। भागदौड़ भरी जिंदगी में हर इंसान किसी न किसी कश्मकश में है, दुविधा में है। सुविधाओं के इस युग में भी अनेकों दुविधाएं मनुष्य की कुछ स्वनिर्मित हैं तो कुछ अपने आप में परिस्थितिजन्य भी हो जाती हैं। उन सभी के मध्य अपने आप को कैसे उत्साहवर्धक रखें और प्रेरणादायी उदाहरण कैसे बने। सबसे पहली चीज़ जो आरंभ होती है स्वयं से, स्वयं के मंथन से। समुद्र मंथन से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे दिमाग के अंदर जो हम कहते हैं कि घोड़े दौड़ते हैं विचारों के सकारात्मक और नकारात्मक रूप में, उसे समुद्र मंथन की तरह देखना आरंभ कीजिए। समुद्र मंथन से अमृत भी निकला था और विष भी निकला था। इसी प्रकार हमारे दिमाग में जब हम खुद के साथ, स्वयं के साथ संवाद करते हैं, तब सकारात्मक बातें भी आती हैं और नकारात्मक पड़ाव और पहलू भी महसूस होते हैं। आपको महत्व किसे देना है ये मायने रखता है, और हमें केवल महत्व ही नहीं बल्कि सकारात्मक रूपी अमृत और नकारात्मकता रूपी विष दोनों ही पीने पड़ेंगे। शंकर भी होना पड़ेगा और सत्य भी होना पड़ेगा। उसके लिए आवश्यक है स्वयं के साथ ईमानदार होना और उस समुद्र मंथन में परिपक्व हो जाना कि जीवन के साथ अमृत और विष सदैव के लिए बंधे हुए हैं। और जब हम अपने आप को ये स्वीकृति दे देते हैं तो निश्चित रूप से वो परिस्थिति भी सामने से धूमिल हो जाती है। कहते हैं पहाड़ हो जल आँख हो जल। इसी प्रकार बहुत सी स्थितियाँ आज के इस युग में ऐसी हैं, यदि हम आंखें बंद कर लें तो स्वतः ही मिट जाती हैं। उसके लिए आवश्यक है स्वयं की खोज पर निकलना, और उसके लिए आवश्यक है अच्छा संगीत सुनना, अच्छी दिनचर्या होना और सम्मान रूपी वातावरण में रहना।

जीवन में चलने के लिए दिशा का होना बहुत आवश्यक है। जिनकी दिशा सही होती है वो निश्चित रूप से मंजिल तक पहुंचते हैं। मनुष्य का लक्ष्य, आज हम हर किसी से बात करें सब यही कहते हैं हमें बड़ा करना है, बड़ा करना है। लेकिन यदि हम प्रकृति की ओर देखें तो बहुत सूक्ष्म चीज़ों में ही बहुत दीर्घ अर्थ छुपे हुए हैं। इसलिए बड़ा करने से पहले छोटी छोटी जो सीढ़ियां हैं, बड़ा सोचिए ज़रूर लेकिन छोटी सीढ़ियों से होकर गुजरिए। इससे मनुष्य दंभ रूपी दुर्गुण से बचा रहता है और साथ ही मंजिल को पाना भी आसान होता है, क्योंकि धैर्य का विकास होता है। और जहाँ पर संयम होता है वहाँ सहन शक्ति होती है, जहाँ सहन शक्ति होती है वहाँ पर अवसाद नहीं होता, संवाद होता है, वहाँ पर समालोचनाएँ होती हैं, वहाँ पर आगे बढ़ने के लिए सशक्त मार्ग होते हैं।

हम उत्साहवर्धन के बारे में बात कर रहे हैं और आकाशवाणी के स्टूडियो में बैठकर ये बात बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कह सकती हूँ और प्रत्येक भारतवासी की ओर से कह सकती हूँ कि जो जुनून और जो आत्मविश्वास, जो उत्साह हमें तिरंगे को देखकर आता है, राष्ट्रगान को सुनकर आता है, वंदे मातरम को गाकर आता है, वो शायद ही किसी और चीज़ में हमें आनंद आता हो। तो इसलिए आवश्यक है कि जब आप बड़ा सोचें तो वो बड़ा इस आधार पर सोचें कि हमें पूरे भारतवर्ष के लिए सोचना है। तो हमारे कर्म इस प्रकार निहित होने चाहिए। सर्वप्रथम श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है निष्काम कर्म हमें करना होगा, और दूसरा स्व से ऊपर उठकर हम के बारे में सोचना होगा। यही भारतीयता कहती है, यही भारतीय ज्ञान कहता है और यही भारतीय कर्म कहते हैं।

फतेह करने के लिए सबसे बड़ा मैदान यदि कोई कुछ है तो वो हमारा मन है। जब हम मन और मस्तिष्क के मध्य संतुलन बना लेते हैं तो हमारे अंदर हौसला विकसित होता है, और जब हौसला होता है तो विषम से विषम परिस्थिति भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती। हम आगे बढ़ना सीख जाते हैं, अकेले चलना सीख जाते हैं, और जिस मनुष्य के अंदर ये भाव आता है कि मैं अकेला काफ़ी हूँ मेरे सपनों के लिए, क्योंकि सपने मैंने देखे हैं तो जिम्मेदारी भी मेरी है, तो वो पहले स्वयं का निरीक्षण करता है, उसके बाद दूसरों का निरीक्षक बनता है। और ऐसा इंसान व्यावहारिक रूप से कुशल होता है, दुनियादारी की भाषा भी समझता है, व्यवहार भी समझता है, व्यापार भी समझता है, और इसलिए बहुत से संकटों से दूर भी रहता है।

0: जीवन में आप कितनी भी जीवनियाँ पढ़िए, कितने भी उदाहरण अपने सामने देखिए, चाहे संघर्ष के देखिए या तरक्की वाले देखिए, उनको देखिए जो शिखर पर आज विराजमान हैं। सभी ने त्याग को चुना, उस मार्ग को चुना जो देशभक्ति से होकर गुजरता है, राष्ट्र निर्माण से होकर गुजरता है। इसीलिए अपनी रुचियाँ सबसे पहले आप जिस भी देश के नागरिक हैं उसके संविधान से जोड़िए, दूसरा उसके समाज से जोड़िए, और तीसरा वहाँ के भाव से जोड़िए। तरक्की निश्चित हो जाती है और सुनिश्चित हो जाता है आपका विकास, देश का विकास।
1: देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए।

0: सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
2: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
3: सानंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक CG सेमी ऑसेट सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल

0: लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहाँ निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
2: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होला लेस्क्योर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक, वित्तीय, तकनीकी, निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद

0: करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मुसल्ला में आयतुल्लाह अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबोव, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को दूसरे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों के ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में 52,000 करोड़ रुपए के सौदे स्वीकृत, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है ड्रोन टैंक मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी। लोकसत्ता लिखता है सेना की बढ़ेगी ताकत। हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून सहित अनेक अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापा है। लोकसत्ता ने संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का बयान दिया है, राम भक्तों को पहुंचा आघात, दोषियों को मिले सजा। सरकार द्वारा 7 चीनी ऐप हटाए जाने पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अब बीच रास्ते बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है बैट BMS जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है। हलाला 3 तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल की भागदौड़ जिंदगी, ऑफिस का तनाव और हर वक्त काम करने की सनक से बर्नआउट हुए लोगों को लाई डाउन की सलाह दी है।

0: घास पर चादर बिछाएं, लेट जाएं और कुछ ना करें। मानसिक थकान दूर, दिल दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है, अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती। बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन, जनसत्ता की पहली खबर है। अलनीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू लॉन्च सेवरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन राजस्थान एंड गुजरात टुडे टू इनॉग्रेट कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इन बालोतरा। Gujarat anti-terrorist squad arrests 8 people associated with Pakistan-based terror outfit Jaish-e-Mohammed. Center reviews below normal rainfall situation and potential drought conditions in certain areas across the country due to El Nino. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Maharashtra and Odisha for today. In FIFA World Cup, Argentina enter round of 16 after defeating Cabo Verde in a thrilling 3-2 encounter at Miami. Egypt also cruise into pre-quarterfinals. And men in blue to take on England in second T20 in Manchester this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Rajasthan and Gujarat today to inaugurate and lay the foundation stone of several development projects. The Prime Minister will first travel to Rajasthan, where he will inaugurate the new terminal building of Jodhpur Airport this morning. The project, worth 480 crore rupees, is designed to handle up to 20 lakh passengers annually. He will also launch the modified Udaan scheme in Jodhpur. Thereafter, Mr. Modi will travel to Balotra, where he will dedicate, inaugurate and lay the foundation stone for development projects worth approximately 1.06 lakh crore rupees this afternoon. These projects span multiple sectors, including petrochemicals, urban transport, railways, roads, renewable energy and power transmission. Prime Minister Modi will also lay the foundation stone for Phase 2 of the Jaipur Metro Rail project, which has a total cost of over 13,000 crore rupees. More from our correspondent.
3: The refinery and petrochemical complex is expected to open new avenues for investment, employment and industrial growth in the state's western districts. The Rajasthan refinery project will also boost sectors such as MSMEs, packaging, textiles, auto components and agri films, providing a fresh push to the state's economy. Built on Rajasthan's challenging desert terrain, the project is a remarkable feat of engineering. The second phase of Jaipur Metro Rail project will develop the north South corridor, significantly enhancing the city's multimodal connectivity. The corridor will integrate metro services with the airport, railway station and bus terminal, providing seamless and more convenient public transport for citizens. Jitendra Dwivedi, Akashwani News, Jodhpur.
2: Later in the evening, Prime Minister Modi will travel to Gujarat, where he will inaugurate the CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility at Sanand in Ahmedabad. The project is one of the first 4 approved under the India Semiconductor Mission and has been developed with a total investment of over 7,500 crore rupees.

जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत, कलाकार हैं प्रधान सिंह शांडिल्य और उनके साथी।
3: वो आकाशवाणी सुनी तो बहुत गुस्से में होकर उस देवकी के केस पकड़ के नीचे गिरा देता है। साथ में बैठे वासुदेव उस कंस को समझाते हैं और एक बात के द्वारा क्या कहते हैं। ओ इसी समय ते ब्याह का अवसरी और दूजे लगे

0: अपना चतुर्भुजी रूप दिखाते हैं और क्या कहते हैं,
1: हुए शंख चक्र गदा पद्म प्रभु के

मारे झपटके दोनों रह गए बाल धरती। और मैं बोलिया वरदान मांग लो तुम मुक्ति तय गए नाटक की। तू बोले

अभी आपने सुना कार्यक्रम लोक संगीत, कलाकार थे प्रधान सिंह सांडलिया और उनके साथी। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। सबरस कार्यक्रम आज आप सुन रहे हैं डॉक्टर भूमिका शर्मा के साथ। कार्यक्रम में पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म वेकअप सिद से, आवाज़ कविता सेठ और अमिताभ भट्टाचार्य की। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।

अभी आपने सुना गीत वेकअप सिद्ध फिल्म से। कार्यक्रम में अगला गीत आप सुनेंगे जब वी मेट फिल्म से। जब वी मेट फिल्म का ये गीत आवाज़ इरशाद और उस्ताद राशिद खान के, गीतकार हैं प्रीतम।

जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस। अगला गीत है रॉक स्टार फिल्म से, आवाज़ AR रहमान की और जावेद अली की, गीतकार है मोहित चौहान।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: दीदी, नौकरी लग गई।
2: अरे वाह, बधाई हो।
3: तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी, नया मोबाइल।
3: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
3: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
1: पर दीप,
3: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट

कार्यक्रम सबरस में अब आप सुनेंगे गीत टू स्टेट्स फिल्म से, आवाज अरिजीत सिंह की और चिन्मय श्रीपदा की। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य, निर्देशन किया है अभिषेक वर्मा ने।

अभी आपने गीत सुना टू स्टेट्स फिल्म से, अगला गीत आप सुनेंगे बिल्लू फिल्म से। आवाज़ सहम, आकृति कक्कर और मोनाली की, गीतकार हैं गुलजार, संगीत दिया प्रीतम ने।

बिल्लू फिल्म के गीत के बाद अब आप सुनेंगे संघर्ष फिल्म का गीत। आवाज सोनू निगम की, संगीत दिया है जतिन ललित ने और गीतकार हैं समीर।

अभी आपने सुना एयरलिफ्ट फिल्म का गीत, आवाज़ अरिजीत सिंह की। इसी के साथ कार्यक्रम सबरस यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है।

ये आकाशवाणी करहुतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार और अंग्रेजी समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जा रहे हैं। कृपया अनुप्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रति वर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित है। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश की ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सांणंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गुजरात में आतंकरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। श्री गोयल ने यह भी बताया कि भारत ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। करों में बदलाव, माल ढुलाई में रुकावट और वैश्विक मांग में कमी के बावजूद इसमें 4.6% की वृद्धि दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावों और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। सरकार ने बैट, BMS, ईपोक, IIN और लॉसिकी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टर स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: latest news bulletin.
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी कि 1143 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 10:10 और 12 सेकंड हुए हैं। अब हमारे आज की पहली सभा के प्रसारण संपन्न होते हैं। एफएम बैंड 103.5 मेगा हर्ट्ज पर विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का प्रसारण जारी है। दोपहर 12:30 पर दूसरी सभा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।

0: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार समय हुआ है दिन के 12:30 और 13 सेकंड। अब हमारी आज की दूसरी प्रसारण सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में श्रोता सुनेंगे हरियाणवी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम पसंद अपनी अपनी।
1: पसंद अपनी अपनी कार्यक्रम सुनने वाले सारे भाण भैया ने आनंद भाई की राम राम। और भाइयों, आज शनिवार का दिन है, प्रस्तुत है कार्यक्रम की भाई शुरुआत करेंगे अजीत सिंह और साथियों की गाई हुई रागनी के साथ। पसंद करने वाले श्रोता इसमें रहेंगे दादरी गेट भिवानी से श्रोता हैं श्री कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा। इसी रागनी ने भाइयों पसंद करे हैं खेड़ी चौपटा जिला हिसार से पंडित सत्ता रेड्डी, राजा राम, पुनिया राम, हेर शर्मा, किताब सिंह शौरान। गांव पांडु पिंडारा जिला जींद से श्री बादल सिंह गिल, कमलेश गिल, टीनू प्रीति, डॉक्टर अंकित गिल। अगले श्रोता हैं गांव महेंद्रगढ़ से।

0: विकास गांधी, ममता गांधी, वंश दिया गांधी, नोनू शगुन, विकी गांधी, फरूख नगर, गुरुग्राम से श्रोता हैं भीम व्यास, सुमित व्यास, अभिनव व मयंक व्यास, गांव खेड़ी तलवाण, महेंद्रगढ़ से विजय सिंह लखेड़ा, राजेश मास्टर, प्रकाश अंबवता। इसी रागनी ने पसंद करने हैं वाले हैं लोको कॉलोनी लोहारू से बिल्लू सिंह चिंडालिया, सुरेंद्र कुमार, जोगेंद्र कुमार चिंडालिया, नरेंद्र कुमार और श्रीमती लक्ष्मी देवी। गांव बिरौली जींद से सुरेंद्र सांगवान, सचिन सांगवान, अंकित सांगवान। गांव बाणा ब्रनान से मेघराज शर्मा, गौरव सौरव, विजय अजय, जितेंद्र और जोगिंदर शर्मा। तो सुनो भाई अपनी ये पसंद।
1: वो कहे बोल दर्द के, जख्म कर दे के,

0: अगली प्रस्तुति भजन सुनवाऊंगे पालेराम दैया और साथिया गाई हुई रागनी। पसंद करने वाले श्रोता रहोंगे गांव ग्यासी बागपति यूपी से चौधरी काशीराम दलाल बलदेव सिंह आर्य रामपाल दलाल दयानंद धर्मवीर जितिन अर्पित प्रियांशी ओमपाल सन्नी शहरावत निमेश नैन अनुज नैन। गांव कस्बा छपरौली बागपत उत्तर प्रदेश से जसवंत सिंह खोखर राम कुमार खोखर अनिल और विनीत खोखर सचिन मोक्ष तनुज खोखर। गांव डिकाणा बागपत से जयपाल जय कुमार रोहित। अगले श्रोता हैं जिला जींद में गांव देवरड़ से श्री राम चहल बीर सिंह चहल कमल फौजी हरिचंद विरागी पंडित मां सिंह पंडित जगदीश मास्टर रघुवीर शर्मा मांगेराम। गांव नीमड़ी से श्रोता हैं श्री जगदीश सिंह बलवंत सिंह अतर सिंह सुरेश कृष्ण कुमार धर्मा नंबरदार घोगड़ी देवी जागेराम सज्जन सिंह चरण सिंह सुभाषचंद नंबरदार बौंद सिंह गीसा व नौरंग। गांव द्वारका से शमशेर सिंह। इसी रागनी ने पसंद करे हैं गांव सच्चा खेड़ा से ड्राइवर बलबीर सिपाही सुरेश हवलदार वेद बिहारी। तो सुने भाई अपनी ये पसंद।
1: किच्चक द्रौपदी को देख के और बड़ा हैरान हो जाता है। द्रौपदी किच्चक को समझाती है महाराज आपको सोचना चाहिए, परंतु किच्चक के दिल में तो यही बात थी क्योंकि उसकी तरफ जोर जोर से घूर देखता हुआ वह उसको समझाती कि महाराज आपको सोचना चाहिए।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति बहन सुनवाऊंगे आजाद सिंह खंडा खेड़िया का ही रागनी। पसंद करने वाले श्रोता रहोंगे झज्जर से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, मयंक और रजत भाटिया। इसी रागनी ने पसंद करे हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित राय, एपी राय दुबीहा, नेवरदा गाजीपुर से हैं श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। गांव चिड़िया दूधवास से जिला चरखी दादरी में सोनू संगेलिया, मंजीत संगेलिया, तनिश। गांव मटोर जिला कैथल से श्रोता हैं रामदिया, नीलम बोध, शीशाई से बोलान, अजय टाक, विजय टाक और तमन्ना, रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। तो सुनो भाई अपनी ये पसंद।

कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति भैया ने सुनवाऊंगे बलवंत वत्स और साथियों की गायी हुई रागनी के साथ। पसंद करने वाले श्रोता रहोगे आदर्श गांव बलियाली हरियाणा से दर्शन लाल बंसल, सुदेश रानी बंसल, प्रवीण कुमार, ममता रानी, कमल कुमार, गर्विश कुमार बंसल। गांव ईरण छप्पर से जयपाल धीमान, यशपाल, विनोद कुमार और भूवंश धीमान। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, सुनीता जैन, सुनीता शर्मा, सुनीता ढिल्लो, संदीप गुगलानी। लाल मस्जिद भिवानी से प्रवीण पोपली, अमित पोपली, बेबी ज्योति, तुलसी, शीला, गीता, दीक्षा और बेबी नोनी। गांव चौधरीवास से मांगेराम सातोड़, सुनील टेलर, शुभम यस। जिला जींद में गांव देवरड़ से श्री राम चहल वीर सिंह और मास्टर ओम बलवान धर्मचंद प्रजापत, दरयामुराम विरागी बालाराम और मास्टर रघुवीर शर्मा, पंडित मुयाम लाल। गांव बाणा ब्रह्मनांसी में मेघराज शर्मा, योगेंद्र और अजय सौरव शर्मा। सुने भाई अपनी ये पसंद।

मन की ममता चित्त की चिंता अलग छाटने वाले।

0: तो भाई यो बलवंत वत्स की गाई हुई इसी रागनी के साथ ही देख ली घड़ी का नहीं कार्यक्रम का समय हो रहा समाप्त चल लेंगे सारे भाण भैया ने राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे हरियाणवी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम पसंद अपनी अपनी, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार दिन के 1 बजने को है। कुछ ही क्षणों के बाद आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 1:05 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय राजस्थान के बालोतरा में हैं। उन्होंने बालोतरा में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। इससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण विकास से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे।

गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूएपीए अधिनियम में संशोधन से केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की शक्तियों का विस्तार करके देश के आतंकवाद रोधी कानूनी ढांचे को मजबूत किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, मतदाता पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तरीय अधिकारी ने उपराष्ट्रपति भवन में चल रही मतदाता सूची के एसआईआर के अंतर्गत गणना प्रक्रिया को सुगम बनाया है। श्री राधा कृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार को अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक की कार्यसूची में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉ अनिल मिश्रा द्वारा किए गए त्यागपत्रों पर विचार किया जाना शामिल है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कंसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना नहीं छोड़ेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख स्पष्ट और स्थिर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद के समर्थन से विश्वसनीय और स्थायी रूप से पीछे हटना होगा। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि तीस्ता परियोजना पर भारत अपने विचार पहले ही बांग्लादेश को बता चुका है। सरकार ने बैट, बीएमएस, ईपॉक, आईआईएन और लॉसिगी ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़ी सूत्रों ने बताया कि इन ऐप्स को ऐप स्पोर्ट से हटाने का निर्देश दे दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह फैसला संभावित गलत इस्तेमाल और सुरक्षा जोखिम को देखते हुए लिया गया है। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद BARC को समाचार और गैर समाचार दोनों श्रेणियों में टेलीविजन रेटिंग जारी करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक परिषद को टेलीविजन रेटिंग नीति 2026 के अंतर्गत लाइसेंस नवीनीकरण नहीं मिल जाता। नई व्यवस्था के अनुरूप पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित होने और लाइसेंस के नवीनीकरण के बाद ही टेलीविजन

0: रेटिंग का प्रकाशन फिर से शुरू किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रदेश में 12 स्थानों पर ग्रामीण हाट एवं खरीद केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए जगह की पहचान कर ली गई है। इनके लिए 30-35 लाख रुपए की लागत से शेड बनाए जाएंगे। इसके अलावा खंड स्तर पर भी खरीद केंद्र बनाए जाएंगे। इनमें स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादन संगठन एवं किसान अपनी फसलों एवं अन्य उत्पादों की बिक्री कर सकेंगे। मंडी बोर्ड के अधिकारियों की बैठक लेने के बाद मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा यमुनानगर, करनाल एवं नारनौल में कोल्ड स्टोरेज एवं पैक हाउस बनाए जाएंगे। इनके लिए टेंडर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि रोहतक के एग्रो मॉल को उपयोग में लिया जाने लगा है। इसके अलावा करनाल, पानीपत और पंचकुला के एग्रो मॉल के लिए भी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा पिंजौर की सेब मंडी के लिए भी जल्द ही टेंडर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम की सब्जी मंडी को शहर के भीड़ वाले स्थान से कालियावास की 22 एकड़ भूमि पर स्थापित की जाने वाली फूल मंडी में स्थानांतरित किया जाएगा। इसके अलावा फरीदाबाद की सब्जी मंडी को भी जल्द ही बाहर भेजा जाएगा। श्री नायब सिंह ने कहा कि प्रदेश की 93 मंडियों में मजदूरों के लिए अटल कैंटीन खोली गई है तथा 10 अन्य मंडियों में भी जल्द यह कैंटीन खोली जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडियों में सही मापतोल के लिए इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीनें भी लगाई गई हैं और राज्य की 108 मंडियों का इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल के साथ संपूर्ण एकीकरण किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंडी बोर्ड द्वारा बनाई जाने वाली सड़कें तय मानदंड के अनुसार बनाने और गुणवत्ता के मामलों में कोई लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मंडी बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश में कोई भी सड़क टूटी नहीं रहे। मुख्यमंत्री ने बैठक में बजट घोषणा अनुसार ग्रामीण हाट एवं खरीद केंद्र बनाने, सड़कें बनाने तथा उनके रख रखाव, फसलों के गेट पास से जारी करने, एग्रो मॉल, मंडियों में सफाई व्यवस्था, पैक हाउस एवं कोल्ड स्टोरेज, अटल कैंटीन सुविधा और विजन 2047 आदि को लेकर विस्तार से समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने सभी अनाज मंडियों में सफाई व्यवस्था की उचित व्यवस्था करने, मंडियों में नाले, शेड एवं खुली जगह में भी सफाई करवाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि मंडियों में सफाई को लेकर किसी प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। हरियाणा सरकार ने पात्र अनुबंध कर्मचारियों के सत्यापन और उन्हें सेवा सुरक्षा के तहत नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव पत्र जारी करने के लिए 15 अगस्त तक का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत कार्यक्रम का पहला गीत। हम आपको सुनवा रहे हैं गुरु फिल्म से। इसे गाया है श्रेया घोषाल, उजे और उदय मजूमदार ने। गुलजार का लिखा गीत है और ए आर रहमान का संगीत।

अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे हमने लिया है सिंग इज किंग फिल्म से। गीत को गाया है राहत फतेह अली खां और श्रेया घोषाल ने। मयूर पुरी का लिखा गीत है और प्रीतम का संगीत।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से श्रोता सुन रहे हैं चित्रपट संगीत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आपको सुनवाते हैं वीर फिल्म का गीत। गायक कलाकार हैं रूप कुमार राठौर, श्रेया घोषाल और सुजैन डी मेलो। गीत रचना गुलजार की है और धुन तैयार की है साजिद वाजिद ने।

टॉम, डिक एंड हैरी। अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत। गीत को गाया हिमेश रेशमिया और आहिर ने, गीतकार समीर और संगीतकार हिमेश रेशमिया। और कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं तुम मिले फिल्म से।

अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे हमने लिया है खट्टा मीठा फिल्म से। गीत रचना इरशाद कामिल की है, इसकी धुन तैयार की है प्रीतम ने, गीत को गाया है के और सुनिधि चौहान ने।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: दिल बोले हड़िप्पा, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत। गीत को गाया है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने। जयदीप साहनी का लिखा गीत है और प्रीतम का संगीत।

पद्मावत फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार दिन के 2 बजने को हैं। कुछ क्षणों के बाद आप सुनेंगे समाचार। समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली

0: जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे, जहां वे सांणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
4: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन

0: लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, ओटीटी प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुखिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में आयतुल्लाह अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
2: चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है, तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं। मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितनी प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। जनता नर्सरी बनाई है, उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है, अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान

0: तेलंगाना और विदर्भ में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
1: मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार पांचवें दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है खेत खलिहान।

खेत खलिहान कार्यक्रम सुनने वाले सारे भण भैया ने आनंद भाई की राम राम। और फिलहाल भाई वो खेती बाड़ी के साथ साथ अपना जो मौसम की अगर बात करी जा है तो मौसम अपना बिल्कुल खुशनुमा है भाई। बादलवाई कहीं कहीं भाई बूंदाबांदी के आसार बन रहे हैं और एक दो दिन के दौरान भी भाई बूंदाबांदी चल रही है, कितने कितने थोड़ी मोड़ी बूंदाबांदी होने लग रही है। लेकिन जो अपना हरियाणा का मौसम है भाई, 6 से लेके और 8 तक जो अपना पूरा लगभग जो हरियाणा राज्य है इसमें मानसून की दस्तक होगी। तो जो भी अपने भाई कृषि संबंधी कार्य हैं भाई, कितने भैयान धान की रोपाई चल रही है, धान वाले बेल्ट में भैया ने धान लगा भी लिए हैं कई जगह। तो मौसम जो है भाई इस टाइम के ऊपर चौमासा का टाइम हो जाए, बरसात का टाइम है तो देखो धान ने तो वैसे भी बरसात पानी की ज़रूरत हो है। तो इस हिसाब से भाई अपनी जो तैयारी है भाई, कितने जड़े भाई खास तौर पर अपना रोहतक का कुछ भी वाणी का कुछ नहरी इलाका है, कितने भाई झील झोंक के किले हैं थोड़े टाइम सर भाई हम लगा लें ताकि यो दिक्कत आओगी कई बारी भाई नीचे जो अपने चौव वाली ज़मीन है कितने नहर के सारे भाई अपने बड्डे हैं भाई, उड़े अपने ज़्यादा बरसात हो जाए तो डूबने का आकार हो जाए, प्योद डूब जाए फिर मार मार जाए। तो भाई पानी जो निकासी का प्रबंध है वो भी हमने साथ ही साथ करके चलना है ताकि झील जो के अपने कितने न कितने अपनी खेती बाड़ी हुआ मार में नहीं आवे। तो इस हिसाब से भाई जो भी खाद पानी का प्रबंध है अपना आगे चाल की जो भी दिनचर्या के काम है भाई, बरानी इलाके में भाई बरसात का टाइम पर बाजरे की बिजाई भी करेंगे और कहीं कहीं भाई गुवार की भी होगी। और भाई अपना दिनचर्या में जो देख के चल रहे हैं कि अपने जो भी हरिया चारा वाली फसलें हैं खास तौर पर भाई उनका भी चालदारा है कि तभी बरानी इलाके में भाई बाजर भी अपने चरी

0: काम आ जाए। बाजरे की भी बिजाई करेंगे, बाजरे की भी करेंगे, जड़े पर्याप्त आराम पर बरसात पर निर्भर है। तो उड़े जो बरानी इलाका है भाई, उड़े बरसात होया पाछा अपनी तैयारी करके चलें, चाहे वो अपने शुरू में खाद पानी करना है या फिर अपने बाई जुताई, क्योंकि अड़ंगा जब ती फसल में होगा तो भाई अपनी जो प्रमुख फसल है उसने उभरण नहीं देगा। तो खेत की बिल्कुल सफाई हम रखा, ठीक ढंग पर हम तैयारी रखा, बढ़िया जो बीजा का चुनाव हो हमने करके चलना है, क्योंकि जो वराइटियाँ हैं आजकल बिल्कुल आधुनिक नई नई जो किस्में हैं वो ईजाद हो रही हैं, तो उनका हमने ध्यान रखें, पहचान रखें, भरोसे की जगह पर हम बीज लें। और इसी तरीके से भरोसे की जगह पर बात करी जाए तो भाई आजकल जो पेस्टिसाइड हैं धान में पड़ने वाली दवाइयाँ, मान लो हो हम चाहे और भी हम कोई सी दवाई लेके आओ हैं या फिर DAP यूरिया लेके आओ हूँ, उनमें भी बहुत सी मिलावट पाई जाए, क्योंकि कई बारी देखने में भी आया था। और भाई आजकल बैठ की चौपाल में जिक्रे चाले हैं भाई की जगह माम तो सुनने में भी आ गया है, और जो DAP है वह काफ़ी जगह नकली चालन लागरी है। कई जगह तो ऐसा भी देखने में आया था कि जो पानी DAP में आम पानी में डाल दें हाँ तो ऊपर तरन लाग जाए हवा। तो इस हिसाब से जो उसके कुछ पैमाने हैं भाई, अपने हथेली में उसने दबा की फूक मार की थोड़ी पिंगल जाए या फिर बहुत से ऐसे पैमाने हैं उनकी हमने जांच परख कर की, कोई विश्वास प्रद अपना दुकानदार हो, कोई पक्का बिल हमारे पास हो, चाहे वो बीज का हो चाहे खाद पानी का हो, फिर हमने जाके ये सूझबूझ तो काम करनी है। क्योंकि आज की जो सघन खेती में एक तो भाई वैसे भी अपना देख हम देख खर्चे ज़्यादा उठा ले हैं और ठेके बटाई का अपना खेत हो गया है, इस हिसाब से तो थोड़े सूझबूझ की किसान भाई काम करेगा तो या गचाल की सफल हो पाओगा। पर इसके साथ साथ जो खेती बाड़ी है उसके साथ साथ थोड़े अगर हम सहायक धंधे अपना ले हैं तो सबसे बढ़िया रहा है, क्योंकि एक चाहे वो हम प्रकृति की मार के ले हैं, चाहे फिर कोई कारणवश ऐसा आ जाए भाई, कोई बीमारी सी आ जाए फसल हम अपनी, धान में तो खास तौर पर कई साल पहले अभी चालन लाग रही थी भाई, ओपर की थी, नाड़ तोड़ की थी, बहुत से ऐसी बीमारी आ जाए जो बिल्कुल खेत के खेत अपने साफ हो जाए। फिर अपना जो सहायक धंधा है चाहे वो कृषि संबंधित कोई भी अपने भाई मछली पालन का है, मुर्गी पालन का है, पशुपालन का है, तो इस हिसाब से थोड़ा फिर हमने साथ के साथ किसान भाई ने उभारदार हुआ है, और जो अपनी चाहे वो खेती की शुद्ध आमदनी लगा लें या फिर सहायक धंधे की आमदनी लगा लें हैं, एक में अपना खर्चा चल गया है और एक में अपनी थोड़ी ही बचत आ गया है। तो आज थोड़ा हा जो पशुधन है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस टाइम के ऊपर जो पशुधन है चौमासे का टाइम आंदा जा रहा है, बरसात का टाइम आंदा जा रहा है, तो भाई अपना जो टीकाकरण है चाहे भाई वो गलघोंटू का है, मुँह खुर का है, अपने भाई कितने न कितने अपना जो कुछ पेट के कीड़े की दवाइयां हैं, चाहे वो छोटा काटड़ू बाछड़ू है, बड्डी अपना बड़ा पशु है, गाय है भैंस है, तो उनने भी हमने टाइम सर भाई चाहे साफ़ सफाई का प्रबंध हो उनकी भी देखभाल रखनी बहुत ज़रूरी है। तो चलो टाइम हो रहा कुछ गीत रागनी का, तो भैया जाकर फिर करांगे, भैया ने एक रागनी सुनवा दिया हाँ बलबीर शास्त्री और साथियों की गाई हुई।
1: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ, हर दिल हर घर और हर जन हर वर्ग को जोड़ने का है साधन, विश्वसनीय असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर, हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार, अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: पेश है किसानों के लिए दुनिया का पहला तरल नैनो यूरिया, इफको नैनो यूरिया। अब खेती की लागत कम, आधा लीटर बोतल में एक बोरी यूरिया का दम।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: दीदी नौकरी लग गई।
2: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी, नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।

0: बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
1: प्रदीप,
0: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
2: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
0: अच्छा।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: तो भाइयों, जकर अपना खेती बाड़ी के साथ साथ जो पशुधन है इसकी देखभाल का चल रहा था, तो जो पशुधन है वही आजकल पशु सस्ते नहीं रह रहे हैं, बहुत महंगे महंगे पशु हो रहे हैं, चाहे वो गाय की बात करा हाँ, भैंस की बात करा हाँ, या फिर सांड की बात करा हाँ, क्योंकि मुर्रा नस्ल के भाई आजकल जो काटड़ू बाछड़ू हैं, जोटे हैं, वह भी बहुत महंगे हैं। और टाइम ही अपने भाई चौमास का आने लग रहा है, गर्मी का टाइम है, तो पशु इस टाइम के ऊपर थोड़ा हा दूध तो कटने लग जाए, अगर उसने पर्याप्त हरा चारा नहीं मिला तो दूध तो टूटा जाए। तो कोशिश हम जरूर करें कि भाई जो पशुओं ना हरा चारा नहीं मिल रहा हो, तो भाई साइलेज है अपना, और ए जिसने हम कह दें बिल्कुल एक दबा हुआ चार जो एक सही तरीके से तैयार किया जाए, उसका हम प्रयोग कर सके हैं। पशुओं ने विटामिन और जो लवण है मिश्रित आहार हमने देना चाहिए, और ख़ास तौर पर ग्रीष्म काल में पशुओं ने भूख कम हो जाए तो पशु ने भोजन तो अपना नहीं देखा हाँ कि खंदा नहीं है, चरदा नहीं है, थोड़ा कम चरे है, तो भाई भोजन में अधिक ऊर्जा की ज़रूरत हो है, तो उन्हें भाई हम तेल इत्यादि दे सके हैं। इसके साथ साथ पशुओं का जो पाचन तंत्र है वो बिगड़ सके है, तो उन हम सुपाच्य भोजन और पर्याप्त मात्रा में पानी हम दें दे रहा। थोड़ा चौमासे के टाइम पर तेल हमने थोड़ा कम कर देना चाहिए, तेल इतना नहीं देना चाहिए। और जब भी हमने ये देखा कि गलघोंटू और मुँह खुर का टीकाकरण है, वो हमने टाइम टाइम पर बिल्कुल ही करवाना चाहिए। पशुओं ने पेट में कीड़े मारने की जो दवाई है, चाहे वो छोटा काटड़ू बाछड़ू, वो हमने टाइम से हमने देना रहना चाहिए। गर्मियों का मौसम में पैदा की गई भाई ज्वार में थोड़ा बहुत, क्योंकि जो ताज़ा ज्वार हो है जब तीस में पानी नहीं लगता, थोड़ा उसमें जहरीला पदार्थ हो उसका है, तो उसना हम पानी लगा कि बिल्कुल ही थोड़ी पर्याप्त उसमें तरबतर हो जाए है, जब हमने पशुमाती खिलानी चाहिए। और जैसा हमने पास जो भी भोजन है दिनचर्या के, जो अपना चाट बाखर बंटा है भाई, उसमें मिश्रित चाट बाखर बंटा दीवा हाँ, तो उसके में थोड़ा हा नमक की मात्रा है या फिर खनिज मिश्रण की मात्रा है, वो हम पर्याप्त रूप से, क्योंकि जो ज़्यादा दूध देने वाला पशु है, मान के चलो हम भाई 14-15-16 लीटर तक का पशु है, तो उसने हम 150 ग्राम तीन जो है खनिज मिश्रण दे सके हैं। और जो छोटा काटड़ू बाछड़ू है भाई, उसने 50 ग्राम तक दे सके हैं। और खनिज मिश्रण देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के दिन जो पशुओं में बीमारी चल रही है, चाहे भाई वो मुँह खुर की हो, थन की हो, अदम ब्यात की हो, फूल दिखाने की हो, बहुत सी समस्याएं आजकल पशु खुटत ही सीमित रह गया। इसके कारण जो पशु है अपना भाई पाचन क्रिया तो बढ़िया नहीं बना पाता, उसने जो भी अपनी जो विटामिन खनिज लवण मिलने चाहिए थे पहले चरकी आरदा पशु, आज वह खुटती सीमित होने के कारण पशु में कमी आ रही है, तो खनिज मिश्रण की मात्रा जो हमने टाइम से दिन दे रहना पड़ेगा। और इसी तरीके से जो अपना पशु है भाई, उसकी खोरना आजकल चौमास का टाइम आओगा भाई, अपना हरा चारा उसमें भी आजकल जो लाल लाल कीड़े या फिर गजाई जिस नाम कह दिया आरदे उनका टाइम आ जाए, तो साफ सफाई का विशेष तौर पर प्रबंध जरूर रख के चलें। और जो पानी है हमने दिन में, क्योंकि गर्मी का टाइम है, तो भाई 3-4 बारी हम ताज़ा पानी पिलाने की नहलाने की कोशिश करा पशु ने, देखभाल रखें, जब पशु धनता हम ठीक लाभ ले पाऊंगे। तो भाई अनुरागनी एक और सुनवा दे हैं, गायक कलाकार एक बार फिर बलबीर शास्त्री और उनके साथी।
6: ए, मेरे

के पंखा आवा पति के झोलन ना

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेत खलिहान। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार समय हुआ है दिन के 3:22। अब हमारी आज की दूसरी प्रसारण सभा संपन्न होती है। शाम 5:10 पर तीसरी सभा में मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी का ही रोहतक केंद्र है। शाम के 5:09 हो चुके हैं। हमारी तीसरी प्रसारण सभा के कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत आज सुनिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण के लिए विशेष योगदान देने वाले देवेंद्र सूरा के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही हैं नीति शुक्ला।
0: नमस्कार, मैं हूँ नीति शुक्ला और प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ में मैं आज ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने वाली हूँ जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। वैसे तो हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल है, लेकिन जो बात इन्हें खास बनाती है वो है इनका काम। ये जाने जाते हैं ट्री मैन ऑफ हरियाणा के नाम से। आइए, क्या है इनकी जर्नी और क्या है काम, जानते हैं खुद इन्हीं से। स्वागत करते हैं देवेंद्र सूरा जी का, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्ते बहन जी, बड़ा धन्यवाद करता हूँ मैं आकाशवाणी का, जिस तरह आकाशवाणी ने पर्यावरण के विषय को उठाया है और जन जन तक ये बात जाए
0: जी।
2: और समाज में बड़ा परिवर्तन है।
0: तो देवेंद्र जी, आप बने ट्री मैन ऑफ हरियाणा, लेकिन इसके पीछे एक लंबा सफर रहा होगा। हम उस सफर की शुरुआत की बात करेंगे कि क्या थी वो पहली घटना जिससे आपको अंदर तक झकझोरा और आपने सोचा कि इस दिशा में काम करना चाहिए और पेड़ लगाने चाहिए।
2: वैसे तो मैं अपनी मातृभूमि से, अपने देश से बड़ा लगाव है और उसके लिए समर्पित भाव से मेरे मन में यही था, मैं अपने देश के प्रति ऐसा क्या कार्य करूं जिससे मेरे मन को भी शांति मिले और देश को भी लाभ मिले। शुरू में इस तरह हमारा जो बचपन था वो गाँव में या खेतों में ही बीता है, हम प्रकृति से जुड़े हुए थे। लेकिन जब हम शहर में आए सोनीपत में और बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम चंडीगढ़ पुलिस में जब मैं हुआ,
0: अच्छा,
2: तो चंडीगढ़ पुलिस में वहाँ की हरियाली को देखा और मेरे मन में आया जब चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है, क्योंकि वहाँ बहुत ऐसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ या औषधीय पेड़ बड़ी संख्या में लगे हैं। और वहाँ से मेरा मन भी प्रभावित हुआ, जब पेड़ पौधों की वजह से, प्लान की वजह से एक शहर को हरा भरा बनाया जा सकता है और जिसका पूरे देश में नाम है, तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं।
0: तो ये कब शुरुआत की आपने?
2: ये 2011 में मैं चंडीगढ़ में गया और वहां से बड़ा प्रभावित हुआ और उसके बाद धीरे धीरे विचार बनता गया राष्ट्र के लिए ऐसा क्या कार्य करूं जिससे मेरे मन को ऊर्जा मिले, और 2012 में तो इस तरह कार्य शुरू किया और 2014 में तो बिल्कुल ने मन में धारण कर लिया प्रतिदिन पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीना, पर्यावरण के लिए ही कार्य।
0: तो अब तक कितने पेड़ लगा चुके हैं?
2: अब तक 2.5 लाख के लगभग हमने पेड़ ऐसे लगाए हैं जो वृक्षों का रूप ले चुके हैं।
0: अच्छा,
2: जैसे हम परिवार में एक बच्चे का पालन पोषण करते हैं
0: जी,
2: एक छोटे बच्चे की सुरक्षा करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसके खाने का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही पेड़ लगाकर उसकी सुरक्षा, उसके पानी की व्यवस्था, उसको परिवार का एक हिस्सा मानकर उसको इस दृष्टि से गांव-गांव विचार भी बढ़ा और पेड़ भी बढ़े।
0: मेरा अगला सवाल यही था कि एक पौधा लगाना, एक सैपलिंग लगाना या बीज लगाना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन उसकी देखभाल करना बड़ा मुश्किल है और आप हर जगह तो नहीं जा सकते हैं, तो ये कैसे मैनेज करते हैं, कैसे लोगों को जोड़ते हैं?
2: शुरू में जब समाज में गए तो इतना मजबूत विचार नहीं था, क्योंकि गांव-गांव गए, युवाओं को जोड़ा, गांव की चौपालों में गांव वासियों को इकट्ठा किया, तो पर्यावरण के प्रति या पेड़ पौधे प्रति बहुत कम विचार। लेकिन जब धीरे धीरे गए, उनको इनके महत्व को समझाया, तो हमने कहा देखो हमारी मुहिम चलती है बीजारोपण से वृक्षारोपण। अगर जो बच्चा अगर छोटा है बीज से जुड़ जाता है, उसको पता लग गया आम की उठली से पौधा कैसे बनता है, जामुन की उठली से पौधा कैसे बनता है, जब वो उसको बीज से अंकुरित पौधा उगाते हुए खुशी होगी, निश्चित तौर पर उस पौधे से जुड़ेगा और पूरा जीवन उसकी देखभाल करेगा, उसको परिवार का हिस्सा मानेगा और गांव में बड़ी संख्या में सभी को इकट्ठा करके एक मूवमेंट, जन आंदोलन के रूप में कार्य।
0: किस एज ग्रुप का सबसे ज्यादा आपको सहयोग मिला या उत्साह से लगे? वृद्ध लोग थे या युवा थे, किस तरह के लोग थे?
2: वैसे तो पूरे समाज का, जनमानस का सहयोग मिला, लेकिन मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा सहयोग युवाओं का मिला।
0: अच्छा,
2: और उसमें युवाओं में हमारे युवा साथी भी थे और हमारे स्कूल की बेटियां भी, कॉलेज की बेटियां भी थी, जिन्होंने जब हम गांव-गांव गए, गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाए, तो एक समय की बात है हम एक डिवाइडर पर पेड़ लगा रहे थे, तो हमारे मन में आया क्यों ना इस बार हम पेड़ बेटियों के नाम पे लगाएंगे।
0: अच्छा,
2: और हमने 100 पीपल के पेड़ 100 बेटियों के नाम पे लगाए और उनकी सुरक्षा के लिए हमने उसपे लोहे का ट्री गार्ड लगाया।
0: अच्छा,
2: और उसपे हमने, जैसे अक्सर समाज में होता है अगर बेटी के, अगर कहते हैं भाई उसके ऊपर सुनोप लिखा जाता है तो उसमें पिता का नाम ज्यादा आता है हर जगह, लेकिन हमने एक मुहिम चलाई, युवा साथियों से चर्चा की, अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है उसकी माँ का नाम, और उसमें मातृ शक्ति ने, वहाँ के जो भी सम्मानित या जितनी प्रिंसिपल, सभी ने भागीदारी दिखाई, एक बड़ा विश्वास बना समाज में और वो आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, पीपल वृक्ष है, बेटी रोड है, ऐसे कहते
0: हैं। कहाँ पर है बेटी रोड? कहाँ पर है?

0: सोनीपत में है।
1: सोनीपत में ये जर्नी आसान तो नहीं रही होगी, क्योंकि आपने सहयोग की बात की, आई एम श्योर कि बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे इसमें, तो वो किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा?
0: समाज में अगर हम काम करते हैं, अगर हम बात करें पहले भी देश के लिए लाखों व्यक्तियों ने काम किया, और उसमें जब भी हम कोई इस तरह का समाज के लिए देश के लिए कार्य करते हैं उसमें निश्चित तौर पर हमें संघर्ष और बाधाएं आती हैं, लेकिन जब एक लक्ष्य स्पष्ट हो, एक नीति स्पष्ट हो, इस मातृभूमि के लिए देश के लिए कार्य करना है, तो जब शुरू में हम समाज में वृक्षारोपण अभियान चलाया तो अक्सर लोग कहते थे अब भाई ये काम आपका नहीं है, समाज में मानते थे ये तो जो वृक्षारोपण है पेड़ लगाना वो माली का ही काम है, शुरू में वो कहते थे भाई आप और कार्य करो, आप इस तरफ कहां बढ़ते जा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे जब हम उस गांव में पेड़ लगाए और उस गांव में अच्छा वातावरण बना और गांव में फल लगे, किसी गांव में फूल लगे, तितलियों की संख्या बढ़ी, मधुमक्खियों की संख्या बढ़ी, तो धीरे धीरे समाज में एक विचार मजबूत होता चला गया, एक जन आंदोलन का रूप लेता चला गया, गांव गांव इस तरह के अभियान चले और तो सैकड़ों गांव इसमें जुड़े।
1: अब ये तो बात हुई लोगों के सहयोग की, लेकिन अब सवाल उठता है वर्क लाइफ बैलेंस का, क्योंकि आप एक सरकारी नौकरी चंडीगढ़ पुलिस में थे, तो कैसे करते थे ये?
0: मैंने खुद पुलिस में रहते हुए देखे इतने बड़े अनुशासन की सर्विस है और इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, आईपीएस हैं, जो बड़े अच्छे अधिकारी हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है समाज के लिए देश के लिए काम करने की। और ऐसे ही हमारे चंडीगढ़ पुलिस में हमारे डीजीपी हैं, आईजी हैं, एसएसपी हैं, और उनका पूरा सहयोग बना रहता हमारे ऊपर, जो भी हमारी छुट्टियां होती है लंबी छुट्टी या जब भी जिस तरह के हमें ड्यूटी का हम अपेक्षा करते हैं, ड्यूटी के साथ साथ समाज का इस पर्यावरण का काम कर सके। और निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ पुलिस की जॉब में तो बड़ा आनंद रहा, बड़ा अनुभव रहा, क्योंकि पुलिस की जॉब में एक अनुशासन था और पुलिस के अधिकारियों का फुल सपोर्ट मिला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से पूरे देश में एक पुलिस की छवि बेहतर हुई, जिस तरह से समाज में पौधारोपण का कार्य किया, लोगों में विश्वास बढ़ा, तो इसी तरह लोगों में समाज में भी विश्वास बढ़ा, अब पुलिस वाला व्यक्ति भी इस तरह समाज में पर्यावरण के लिए, इस धरती माँ के लिए कार्य कर सकता है।
1: आपने नाम भी रोशन किया, क्योंकि आपका नाम अब जीके के सवालों में भी पूछा जाता है कि ट्री मैन ऑफ हरियाणा कौन है, और जवाब में आपका नाम आता है, तो आपके डिपार्टमेंट का रिएक्शन कैसा होता है?
0: मैं कहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जीव जंतु के लिए, इस पूरे देश के लिए सबसे जो जरूरी है पर्यावरण का विषय है, और ऐसा विषय अगर पूरे समाज में, पूरे देश में अगर चंडीगढ़ पुलिस का नाम होता है तो पूरा गर्व महसूस होता है, चंडीगढ़ पूरी पुलिस को, पूरे कर्मचारियों को, सीनियर अधिकारियों को, और पूरा हौसला बढ़ाते हैं।
1: अच्छा, एक चीज हमने सुनी है कि आप अपनी पूरी पूरी सैलरी लगा देते हैं इस अभियान के लिए, और कई बार आपने लोन भी लिया है, तो क्या वो एक अनुभव रहता है, घर में कभी विरोध नहीं हुआ?
0: जब हमें पूरी पूरी सैलरी इस पे लगा देते हैं, और कई बार ऐसा होता है ज्यादा वृक्षारोपण के या नर्सरी खोलने की बात होती है तो उसमें लोन लेना पड़ता है, क्योंकि लोन से एकदम तुरंत पैसा मिल जाता है। तो शुरू में घर में, परिवार में तो विरोध हुआ, क्योंकि परिवार में अक्सर क्या होता है, ज्यादातर समाज यही अपेक्षा करता परिवार वाले, एक हमारी बड़ी गाड़ी हो, एक बंगला हो, और भी सुविधाएं बढ़े, और भी संपत्ति बढ़े, लेकिन मेरा विचार ये था कि हमारा पर्यावरण बढ़े। जब हवा ही सांस लेने योग्य नहीं रहेगी तो मैं मानता हूँ जो ये भौतिक चीजें जो हम बढ़ाते जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं बहुत छोटी हैं। हमारे परिवार में भी, रिश्तेदारी में भी, समाज में भी ऐसा बहुत शुरुआत में विरोध हुआ कि ये इतना आप इस तरफ बढ़ते जा रहे हो, और समाज जो है एक दिशा जो समाज में चाहते हैं लोग भौतिक संसाधन वो बढ़ाए, समाज में बड़ी दिक्कत आई, परिवार में बड़ी दिक्कत आई, लेकिन धीरे धीरे जब विचार मजबूत हुआ, उन्होंने पता चला जिस तरह से प्रकृति एक मनुष्य भी एक जीव है, अगर हम पर्यावरण के अनुकूल हम नहीं रहेंगे, अपनी जीवन शैली नहीं रखेंगे, पेड़ नहीं लगाएंगे, जितना व्यक्ति का इस धरती पर महत्व है उतना ही एक मधुमक्खी का, उतना ही एक तितली का, उतना ही मोर का, मैं ये कहता हूँ हर जीव जंतु का उतना महत्व है, तो धीरे धीरे विचार बना और पूरा परिवार आज इस अभियान में बड़ा सहयोग करता है।
1: जब आपने ये शुरू किया था अभियान, तो कभी लगा था कि ये इतना बड़ा अभियान बन जाएगा?
0: नहीं, मैं जब गांव से 1995 में आया और गांव में ज्यादा खेतों में जाते थे दादाजी के साथ, और स्कूल में कम रुचि थी, लेकिन गांव से निकल के आए और शहर में पढ़े, मैं कहता हूँ स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ हम बहुत से समाज में जो हमारे सीनियर होते हैं या जागरूक लोग होते हैं उनसे मिले और उनसे सीखने को मिला, और धीरे धीरे मैं ये मानता हूँ कि शुरुआत में ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, गांव जैसे आज कई हजार युवा साथी जुड़े हैं, प्रत्येक गांव में ऐसा मतलब ऐसा महसूस होता है ये गांव भी हमारा है, ये गांव भी हमारा, मतलब पूरा समाज अपना परिवार लगता है, तो इस तरह से गांव-गांव गए और आज कभी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन नेक नीति जब व्यक्ति की स्पष्ट होती है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती, आज महसूस होता है प्रत्येक गाँव अपना परिवार की तरह है और पूरा देश अपना एक मातृभूमि अपना एक परिवार की तरह है, और आज बड़ा गर्व महसूस होता है, क्योंकि आज एक विचार है, प्रत्येक गांव से युवा जुड़े हैं,

0: मातृ शक्ति जुड़ी है। और मैं बात करता हूँ, मेरे को बड़ी प्रेरणा मिलती है जब मैं गांव में जाता हूँ, क्योंकि लोग इकट्ठा होते हैं और वो सोचते हैं, गांव पर व्यक्तियों का नहीं होता, गांव समस्त जीव जंतुओं का, एक अच्छे तालाब का, सभी से मिलकर गांव बनते हैं।
1: आपने जीव जंतु की बात की, तो आजकल हमने ये भी नोटिस किया कि बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, इसी के चलते कि उनके पास प्रॉपर रहने की जगह नहीं है, खाने पीने की नहीं है, तो उनके लिए किस तरह के पेड़ आप लगा रहे हैं कि उन्हें भी प्रॉपर हैबिटेट मिले और खाना मिले?
0: बहुत सी प्रजातियां आज विलुप्त हो रही है और मैं मानता हूँ इसके ऊपर बड़ा गहरा हमने काम किया है। जैसे आपने देखा होगा विश्व में कोरोना जैसी महामारी आई और पूरे संसार को, जिसने प्रत्येक मनुष्य की मन को, विचार को हिला दिया। समाज में जैसे लंबे समय से वृक्षारोपण अभियान चला रहे, लेकिन हम ये मानते जब लोगों का कोरोना काल में प्रकृति के प्रति बड़ा झुकाव था और हमने देखा कि हर गांव में पहले वन क्षेत्र होते थे, बनी होती थी और आपने कहा विलुप्त होती प्रजातियां, तो उन बनियों में वह ऐसे आश्रय थे जहाँ पर मुख्य जीव जंतु जैसे नेवला है, तीतर है, गिलहरी है, मोर है, बहुत से सैकड़ों जीव जंतु उसमें रहते थे। वो उनका एक गांव था और उसमें गांव वासियों का एक विचार बना, युवा साथियों से विचार किया, हर गांव में ऑक्सीजन बाग लगाना है। आपने आम के बाग सुने, आपने बेर के बाग सुने, लेकिन जब ऑक्सीजन शब्द का प्रयोग आया, गांव वासियों का झुकाव बना और हजारों की संख्या में गांव वासी, माताएं, बहने, युवा साथी एक बढ़ चढ़ कर भाग लिया और गांव-गांव इस तरह से 10 एकड़ में, 20 एकड़ में वृक्षारोपण अभियान चले और हरियाणा के 27 गांव में इस तरह के अभियान चले और एक जन आंदोलन का रूप लिया। गांव-गांव ऐसा प्रयास है, हर गांव में इस तरह के ऑक्सीजन बाग लगाए जाए।
1: तो अब तक कितने गांव में आप लगा चुके हैं ऑक्सीजन बाग?
0: अब तक 27 गांव में ऑक्सीजन बाग लगाए हैं और उसके अतिरिक्त जैसे बहुत से गांव में जैसे शमशान भूमि है या किसी तालाब के पास है या स्कूल के पास है, मतलब या स्टेडियम है, मतलब ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं ऑक्सीजन बाग में जो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं। आजकल प्लास्टिक का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, लेकिन उससे पहले हमारे पत्तों की पतल प्रयोग होती थी, उसके लिए ढाक के पेड़ का प्रयोग होता था। हम ढाक के पेड़ को बढ़ा रहे हैं, ऐसे पेड़ को बढ़ा रहे हैं जिससे या तो जीव जंतुओं को आश्रय मिलता है या ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, मतलब धीरे धीरे उन औषधीय वनस्पतियों को भी बढ़ाया जा रहा है।
1: तो आपका फेवरेट पेड़ कौन सा बन गया है, क्योंकि जिसकी ज्यादा बहुत ज्यादा देखरेख ना करनी पड़ी हो, बस लगा दिया और वो अपने आप फल जाता हो?
0: वैसे तो सभी वनस्पतियों का इस धरती पे महत्व है, लेकिन मेरा झुकाव बरगद के पेड़ पे, राष्ट्रीय पेड़ है और एक ही पेड़ मैं कहता हूँ इसमें हजारों जीव जंतुओं का आश्रय बनता है।
1: अगर एक आम इंसान भी हमारी बातचीत सुन के उसे भी लगे कि हमें भी पेड़ लगाना चाहिए, तो वो क्या करे सबसे पहले?
0: अगर आम इंसान भी आकाशवाणी की बात को सुन के और जन जन का विचार बने हमारे को भी पेड़ लगाना है, तो सबसे बड़ी बात है उसका विचार बन गया, पेड़ लगाना ये बहुत बड़ी बात है। और उसको सबसे पहले अपने ऐसी आदत डाले जैसे घरों में छोटी छोटी नर्सरियां बनाए, जैसे अभी हम आम खाते हैं, आम की गुठली से अपने गमलों में पौधा तैयार करे या जामुन की गुठली से पौधा तैयार करे, नीम से पौधा, जो भी घरों में फल प्रयोग करते हैं उसे पौधे तैयार करे और एक छोटे ही घर में ही नर्सरी बनाए। जब उसके पौधे 2-3 फीट के हो जाए तो कहीं भी नजदीक कोई पार्क है या कहीं उसके खेत में है, जहां भी संभव हो उन पेड़ों को लगाए और परिवार का हिस्सा माने और हो सके तो अपने जो भी घर में सदस्य है उनके जन्मदिन पर ऐसा प्रयास करे तो समाज में एक बड़ा परिवर्तन आएगा।
1: अच्छा।
0: पार्कों में वृक्षारोपण कर सकते हैं, अपने घरों में, और नहीं तो ज्यादा नहीं तो मैं कहूंगा ऑक्सीजन देने वाले इंडोर प्लांट लगा सकते हैं जन्मदिन पर, जैसे एरिका पाम है, स्नेक प्लांट है, पीस लिली है, या घर में छोटे पौधे एलोवेरा है, तुलसी है, अश्वगंधा है, ऐसे पौधे हम घरों में जन्मदिन पर लगा सकते हैं। और गाँव वासियों के लिए कहता हूँ, जो अपने गाँव में गोचर भूमि होती है, पंचायत भूमि होती है, उसमें खुले तौर पर बड़ी बड़ी भूमियां होती हैं और खासकर NCR के आसपास में बात करूं तो बहुत ज्यादा संख्या में हर गांव में भूमि है और पंचायती या गोचरण भूमि में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जा सकता है।
1: अवेयरनेस का कितना महत्व है इसमें और सोशल मीडिया के जरिए इसे किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं?
0: अवेयरनेस का ये सबसे बड़ा महत्व मैं अपना अनुभव साझा करता हूं आपके साथ, क्योंकि 10-12 साल पहले जब हम वृक्षारोपण करते थे तो उस समय इतनी जागरूकता नहीं थी, हम गांव-गांव जाते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे, अगर 10 लोगों को करना था उसके लिए भी कई बार प्रयास करने पड़ते थे, लेकिन मैं कहता हूँ सबसे बड़ी अवेयरनेस धीरे धीरे लोगों का विचार बढ़ा और आज सम्मान से महसूस करते हैं पेड़ लगाना बड़ा अच्छा कार्य है। और आज जब भी ऑक्सीजन बाग लगाया जाता है किसी गांव में तो वहां पर उस गांव के हजारों व्यक्ति, माताएं, बहने, बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं, भंडारा लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, एक जैसे घर में त्यौहार होता है या शादी वगैरह होती है इस तरह गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाते हैं। तो मैं ये मानता हूँ विचार के माध्यम से, ये एक संख्या तौर पर वृक्षारोपण हुआ है, लेकिन विचार के माध्यम से समाज में एक बड़ा परिवर्तन

0: यार बड़ा जन आंदोलन का रूप।
1: नेटिव प्लांट का कितना महत्व है? अगर हम पेड़ लगाने के लिए जाएं तो कौन से ऐसे नेटिव प्लांट हैं आप उनका सुझाव देंगे कि ये लगाने चाहिए?
0: जहाँ हम रहते हैं वहाँ के जो स्थानीय प्रजातियां हैं पेड़ पौधों की वो ज्यादा लगाएं। जैसे अगर अपने NCR की या हरियाणा की बात या दिल्ली की बात करें तो इसमें जैसे एक बेरी का पेड़ है या नीम का पेड़ है या जाटी का पेड़ है, मतलब जो बड़ा प्राचीन पेड़ है, तो ऐसे बरगद है, पीपल है, मतलब उन पेड़ों को बढ़ाएं जो आसानी से उस भूमि में चल सके, उसके जलवायु के अनुकूल उनका पालन पोषण कम करना पड़े और विशाल रूप ले सके, वो भी खुश रहे और ऑक्सीजन भी खुश हो के देश के।
1: पॉलिथिन से किस तरह का नुकसान हो रहा है हमारे पर्यावरण को?
0: आज से अगर हम 30 साल पहले की बात करते हैं, किसी गांव में जाते हैं, गांव में कोई भी पॉलिथिन नहीं थी। अक्सर हमारे बुजुर्ग हैं वो कोई भी दाल चीनी या सब्जी लेनी होती थी वो अक्सर पुराने कपड़े और थैलों प्रयोग करते थे। और मैं तो बड़ा गर्व महसूस करता हूँ, साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला।
1: क्या बात है।
0: तो देखो ये पर्सनैलिटी के ऊपर है, व्यक्ति दो तरह की पर्सनैलिटी है, एक इंटरनल पर्सनैलिटी एक एक्सटर्नल, वो हमारे ऊपर हम कैसा जीवन जीते हैं। मैं खुले दिल से थैले का प्रयोग करता हूँ, कोई भी सामान लेता हूँ इसमें डालता हूँ, प्रतिदिन एक घर में कम से कम आप लगाओ 5 पॉलीथिन आती है और महीने की 150 हुई तो साल की 1000 पॉलीथिन हो गई। और धीरे धीरे अगर इसको हम कम करें, मैं जोर दूंगा कम से कम पॉलीथिन का प्रयोग करें, तो धीरे धीरे जब पॉलीथिन कम होगी, गाँव अगर गंदा है तो पॉलीथिन की वजह से गंदा है, शहर अगर गंदे हैं तो पॉलीथिन की वजह से गंदे हैं, और कहीं ना कहीं हम जो ये प्रदूषण के गुलामी महसूस करते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा निवेदन है पॉलीथिन को जितना कम से कम प्रयोग हो, अपना जीवन में पॉलीथिन का कम प्रयोग करें, दोबारा से कपड़े के थैलों का प्रयोग करें, जूट के थैलों का प्रयोग करें, और कहीं ना कहीं इस धरती माता को कुछ दे सकते हैं तो पॉलीथिन को कम करके दे सकते।
1: तो अगर कोई पेड़ नहीं भी लगा पा रहा है और उसकी सेवा नहीं कर रहा है तो कम से कम वो पॉल्यूशन जो करने वाली चीजें वो कम इस्तेमाल करे तो काफी बदलाव आ सकता है।
0: सबसे बड़ा मैं परिवर्तन मानता हूँ व्यक्ति अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करे। वो जीवन शैली में व्यक्ति अगर 4 जोड़ी कपड़े डालता है तो निश्चित तौर पर उस कपड़े को बनने के लिए कितना पानी वेस्ट होता है, भारी मात्रा में, मतलब पानी की वेस्टेज होती है। इसलिए अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल जीने आप प्रयास करें, जैसे समय हो आपके पास तो पैदल चले या साइकिल का प्रयोग करें, कम से कम कपड़ों का प्रयोग करें, साधारण जीवन शैली अपनाएं, मतलब पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाएं।
1: अगर हर नागरिक एक पेड़ लगाए, ज्यादा नहीं सिर्फ एक पेड़ अपने जीवन में लगाए, तो कैसा बदलाव आ सकता है?
0: पूरे विश्व में बात करें तो ऐसे देश भी है जिसमें 8-9 हजार प्रति व्यक्ति पेड़ है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो 28 पेड़ प्रति व्यक्ति है। लेकिन समाज की बात करें, लोगों में बहुत कम जागरूकता है और पेड़ लगाना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर व्यक्ति का यही एक जागरूकता उसके अंदर आ गई है कि मैं एक पेड़ लगाना, वो एक पेड़ से नहीं रुकेगा। एक बार वो पेड़ से जुड़ गया, उसने उस पेड़ को अपने परिवार का हिस्सा मान लिया, तो निश्चित तौर पर हर साल वो किसी न किसी उत्सव जन्मदिन पर पेड़ लगाएगा। और सरकारें भी ऐसा करती हैं, हरियाणा में स्कीम चली है जैसे किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिन किसानों के खेतों में पेड़ है, जैसे पुराने पेड़ है, पीपल है, जाटी है, नीम है, उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जिनके बड़े पेड़ है या गांव में पंचायत को मिलती है या जिसके खेत में है जगह में उसको मिलती है। हरियाणा मात्र ऐसा प्रदेश है जहां पेड़ों को भी पेंशन मिलती है।
1: तो इससे बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा पेड़ लगाने के लिए। और अगर हर बच्चे के जन्म पे एक पेड़ लगा दिया जाए तो मुझे लगता है कि ये काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।
0: हाँ देखो, अगर परिवार में 4 सदस्य है तो 4 पेड़ लगाएंगे, धीरे धीरे समाज में एक जागरूकता बढ़ती जाएगी। और जन्मदिन ही ऐसा एक उत्सव है जो हर वर्ष आता है, हर व्यक्ति का आता है, और जन्मदिन पर हर व्यक्ति चाहता है वो कुछ ऐसा करे जो इस धरती पर आया है उसका मन भी खुश हो, वो इस प्रकृति को भी कुछ देश के। और मैं कहता हूँ अगर आप वाली बात है, अगर जन्मदिन पर व्यक्ति में जागरूकता आती हो, पेड़ लगाता, निश्चित तौर पर इस देश में जो पर्यावरण की समस्या है, पेड़ों की समस्या है, उसका हल एक जन्मदिन पर पौधारोपण से ही पूरे देश में एक जन आंदोलन का रूप बन सकता है।
1: आपने कोई नर्सरी की भी शुरुआत की है क्या, जहाँ से आप बीज या सैपलिंग्स लोगों को देते हैं?
0: हाँ, ऐसा एक जनता नर्सरी बनाई है, उसका नाम भी इसलिए रखा जनता नर्सरी क्योंकि जनता ही नर्सरी है। उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं और उसमें ऐसे पेड़ ज्यादा दिए जाते हैं जैसे बरगद, पीपल, नीम या फलदार जामुन, अमरूद, बेलपत्र, मतलब ऐसे वृक्ष दिए जाते हैं जो सामान्य तौर पर समाज में जागरूकता भी बढ़े और पर्यावरण के लिए भी अच्छे रहे।
1: इतने सालों में कभी आपको ये नहीं हुआ कि भाई बस बहुत हो गया, मैंने बहुत पेड़ लगा लिए, बाकी लोग भी कुछ करें, ऐसा विचार कभी आया मन में?
0: विचार ऐसा आता है कि परमात्मा मेरे को और ज्यादा पहले से ही जागरूक करता, मैं जो ये पेड़ लगाने का कार्य है, ये धरती का जो प्रकृति का कार्य है, ये मैं और पहले से शुरू कर पाता। अभी मन कहता है ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक

0: बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
1: अब कुछ सवाल हमने रैपिड फायर के लिए आपके लिए रखे हैं, तो आपका पसंदीदा पेड़ कौन सा है?
0: मेरा पसंदीदा पेड़ बरगद का पेड़ है, राष्ट्रीय वृक्ष।
1: पर्यावरण को सेफ रखने के लिए कोई एक आदत जो हर भारतीय को अपनानी चाहिए?
0: पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीना चाहिए।
1: और अगले 10 सालों में अपनी इस मुहिम को आप कहाँ देखने का सपना देखते हैं?
0: अगले 10 सालों में यही सपना देखते हैं कि जनमानस में ये मुहिम बढ़े और हर गांव में दोबारा से जैसे पहले गांव थे तितलियां मधुमक्खियां और दोबारा से पक्षियां उड़े और गांव जैसे पहले थे वैसे गांव बने और वनस्पतियां बढ़े, पक्षियों की जो लुप्त होती प्रजाति जैसे गिद्ध है वो दोबारा से लौटे, उनका घर है।
1: एक सवाल मेरे जहन में ये भी आ रहा था कि आप किस तरह से ये काउंट रखते हैं कि इतने पेड़ लगाए? जैसे शुरू में आपने कहा कि लगभग 2.5 लाख पेड़ आप लगा चुके हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप जितने सैपलिंग्स लगाएं वो वृक्ष में तब्दील हों, तो किस तरह से आप ये काउंट करते हैं?
0: ज्यादा करे जैसे हम ऑक्सीजन बाग लगाते हैं और उसमें पहले से ही होता है, इसमें आज इस गांव में 1100 पेड़ लगेंगे या 5000 पेड़ लगेंगे और उसमें प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाता है, गांववासी को जोड़ा जाता है कि इस माता का ये पेड़ है, इस बच्चे का ये पेड़ है और उसको पूरे गांव को उसको जोड़कर उसकी सुरक्षा भी की जाती है ऑक्सीजन बाग की और पानी की व्यवस्था भी की जाती है। और उसमें ऐसा होता है 1-2 पेड़ की दिक्कत हो सकती है, नहीं तो उसमें मैं कहता हूँ 99% पेड़ कामयाब होते हैं। जब हम जुड़ाव एक बच्चे जैसे बच्चा परिवार में होता है, जब पेड़ को भी परिवार का हिस्सा मानते हैं और उसकी देख रेख करते हैं, उसमें कामयाबी निश्चित तौर पर 100% मिलती है।
1: किन लोगों से आपको प्रेरणा मिली इस काम को करने की?
0: वैसे तो सबसे बड़ी प्रेरणा मनुष्य भी प्रकृति का हिस्सा है और इस धरती माँ से बड़ी प्रेरणा मिलती है, लेकिन मैं बात करूँ पूरे विश्व में 1730 में माँ अमृता देवी ने पेड़ों के लिए बलिदान दिया, उनकी प्रेरणा से उनकी तीनों बेटियों ने बलिदान दिया और उनके बलिदान से उस आसपास के गांव के 363 व्यक्तियों ने पेड़ों को बचाने के लिए राजस्थान में बलिदान दिया। मुझे याद आती है माता सालूमरदा थी मक्का कर्नाटक से हैं, जो अभी उनका दाह संस्कार हुआ 114 साल की हुई थी, मैं गया था वहां उनसे मिलने के लिए और उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने बरगद के पेड़ों को अपना संतान के रूप में माना और कोयले की खान में वो काम करती थी, उनका एक झोपड़ी में रहती थी, मैं देखा उनका जो कार्य था इस प्रकृति के माँ के लिए, पेड़ों को बच्चों के रूप में मान के कार्य किया, मतलब ऐसे लोगों से मेरे को बड़े प्रेरणा मिलती है।
1: हमें आपसे ये बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और अगर हमारी ये बातचीत सुन के किसी को भी ये लगा हो कि उनको भी अपने जीवन में पेड़ लगाने चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी बातचीत है बहुत सार्थक रहेगी।
0: मेरे को बड़ी ऊर्जा मिली, ये जो आकाशवाणी के माध्यम से ये विचार आकाश में गूंजेगा और जनमानस में इसका विस्तार होगा, तो जनमानस में जब कोई विचार बढ़ता तो समाज में पूरे देश में एक बड़ा परिवर्तन आता है। तो मैं तो आकाशवाणी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ, इस विषय को उठाया है जो सबसे जरूरी विषय है, मनुष्य ही नहीं प्रत्येक जीव जंतु के लिए जरूरी है, तो मैं आकाशवाणी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ।
1: और भारत के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: भारत के नागरिकों को यही संदेश देना चाहूंगा, अगर वो अपने आप को भारत का नागरिक मानते ही हैं तो सबसे बड़ा है कि वो अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल जिए, कम से कम ज्यादा नहीं तो साल में एक बार अपने जन्मदिन पर वृक्षारोपण अभियान चलाएं, अपने परिवार को जोड़ें और पेड़ों को भी अपने परिवार का हिस्सा माने।
1: तो आपने इतनी अच्छी बातचीत की भाई, मुझे तो बहुत ऐसा लग रहा है कि मुझे भी पेड़ लगाना चाहिए और मुझे लग रहा है हमारी बातचीत सुन करके लोगों को भी लगेगा। अगर ये कुछ लोगों के मन में भी ये बात आ गई ना, तो हमारी आज की ये बातचीत बहुत सार्थक रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी बातें करने के लिए, थैंक यू सो मच।
0: धन्यवाद बहन जी।
1: तो आज के लिए बस इतना ही और मुझे लगता है कि अब आप भी एक पेड़ तो जीवन में जरूर लगाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नीति शुक्ला को नमस्कार।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण के लिए विशेष योगदान देने वाले देवेंद्र सूरा के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी नीति शुक्ला। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

0: और आप सभी साथियों को दीपांशु का भी नमस्कार।
1: साथियों, आज बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जो है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, जो प्रत्येक वर्ष जुलाई माह के प्रथम शनिवार को विश्व भर में मनाया जाता है। इस वर्ष यह दिवस 4 जुलाई 2026 को यानी आज मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1995 से इस दिवस को मान्यता दी गई है, ताकि सहकारी समितियों के आर्थिक और सामाजिक योगदान के प्रति जन जागरूकता बढ़ाई जा सके। सहकारी समितियां सामूहिक प्रयास और आपसी सहयोग के सिद्धांत पर कार्य करती हैं, जहां लोग अपने साझा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मन मर्जी से संगठित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस दुनिया भर में सहकारी आंदोलनों, सरकारों और भागीदारों को एक साथ लाता है।
0: बिल्कुल रिचिता, जैसा कि आपने बताया कि आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हम मना रहे हैं। ये दिवस हर साल जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य साथियों वैश्विक स्तर पर सहकारी समितियों के महत्व, उनकी सफलता और सतत विकास में उनके योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस पहली बार, अगर हम बात करें तो 1923 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन यानी ICA के द्वारा मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 16 दिसंबर 1992 के दिन जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में घोषित किया गया। यह दिन आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय के साथ गरीबी उन्मूलन और समावेशी विकास में सहकारिता की भूमिका को रेखांकित करता है। और साथियों, आज के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और आप जानते हैं आज है शनिवार का दिन, और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम रोजगार समाचार विशेषांक।
1: तो साथियों, कार्यक्रम में पहला रोजगार समाचार है, मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी के 2548 पोस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस वैकेंसी में अप्लाई करने वाले छात्र 13 जुलाई 2026 तक प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। आप सभी ऑफिशियल वेबसाइट chayan.mponline.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन को पूरा कर सकते हैं। वेबसाइट हम दोबारा दोहरा रहे हैं, chayan.mponline.gov.in। विभाग का नाम है महिला एवं बाल विकास विभाग। पोस्ट का नाम है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जिसकी 781 पद हैं, और आंगनवाड़ी सहायिका, जिसके 1777 पद हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास या कम से कम आपकी जो आयु होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18, और ज़्यादा से ज़्यादा आयु आपकी होनी चाहिए 35 वर्ष।
0: और अगला रोजगार समाचार है साथियों, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा 86 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अगर पदों के नाम की बात करें तो मैनेजर के पद हैं सीनियर मैनेजर और चीफ मैनेजर के पदों के लिए अधिसूचना जारी की गई है। और बात करें योग्यता की, तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंस CA, CMA, CS या CFA संबंधित पद के लिए कार्य अनुसार आपके पास योग्यता होनी चाहिए। और बात करें आपकी उम्र की, मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट जिसके 4 पद रिक्त हैं उसके लिए आपकी उम्र 25 से 30 साल के बीच, सीनियर मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट जिसके 38 पद हैं उसके लिए आपकी उम्र 28 से 35 साल, चीफ मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट जिसका 1 पद है उसके लिए आपके पास 32 साल से 42 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए, और सीनियर मैनेजर क्रेडिट एंड CNIC 36 जिसके पद हैं उसके लिए आपके पास 28 से 35 साल, और चीफ मैनेजर CNIC जिसके 7 पद हैं उसके लिए आपके पास आपकी उम्र 32 से 42

0: के बीच होनी चाहिए। आवेदन शुल्क भी साथियों आपको जमा करना होगा, सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 850 रुपये, महिला एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और ईएसएम उम्मीदवारों के लिए 175 रुपये का आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। अंतिम तिथि रहेगी साथियों आवेदन करने की 6 जुलाई 2026, और वेबसाइट आप नोट करें, bankofbaroda.bank.in। वेबसाइट एक बार फिर से आपको बता दें, bankofbaroda.bank.in।
1: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, उससे पहले सुन लेते हैं गीत फिल्म पद्मावत से। आवाज़ है श्रेया घोषाल और स्वरूप खान की, बोल लिखे हैं AM तुराज और स्वरूप खान ने, और संगीत दिया है संजय लीला भंसाली ने।

0: साथियों, भी हमने सुना ये गीत फिल्म पद्मावत से। आवाज़ें थी श्रेया घोषाल और स्वरूप खान की। बोल लिखे थे AM तुराज और स्वरूप खान ने। संगीत दिया था संजय लीला भंसाली ने। बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे।
1: और अगला रोजगार समाचार है साथियों आप सभी के लिए। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन के द्वारा 295 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योग्यता की बात करें, प्लेटून कमांडर जिसके 52 पद हैं उसके लिए आपके पास आप स्नातक उत्तीर्ण होने चाहिए और UPPET स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। ब्लॉक ऑर्गेनाइजर जिसके 243 पद हैं, ग्रेजुएट आप होने चाहिए और UPPET उत्तीर्ण आप होने चाहिए। आपकी उम्र अगर 21 से 40 साल के बीच है तो आप आवेदन कर सकते हैं और आवेदन शुल्क भी आपको जमा करना होगा। सभी उम्मीदवारों के लिए ₹25 का आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है और अंतिम तिथि रहेगी 6 जुलाई 2025। और वेबसाइट आप नोट करें, upssc.gov.in। वेबसाइट एक बार फिर से आपको बता दें, upssc.gov.in।
0: अगला रोजगार समाचार है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने ग्रुप 2 और सब ग्रुप 1 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 2784 रिक्त पदों को भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन 17 जुलाई तक भरे जाएंगे। उम्मीदवारों की सिलेक्शन CBT मेरिट लिस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर अंतिम नियुक्ति की जाएगी। परीक्षा का आयोजन 2 अगस्त 2026 को किया जाएगा। यह परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। पोस्ट है कृषि विस्तार अधिकारी यानी AEO। आयु सीमा रहेगी 18 से 45 वर्ष। ऑफिशियल वेबसाइट है esb.mp.gov.in। वेबसाइट आपको दोबारा बता देते हैं, esb.mp.gov.in। उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से संबंधित विषय में ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए।
1: और अगला रोजगार समाचार है साथियों, उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 पर्सनल असिस्टेंट के कुल 398 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बात करें साथियों योग्यता की, जूनियर असिस्टेंट के पदों के लिए आपके पास आप जो ग्रेजुएट होने चाहिए और टाइपिंग स्पीड भी अनिवार्य है। स्टेनोग्राफर के पदों के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के साथ टाइपिंग और स्टेनो का अभ्यास आपके पास होना चाहिए। 21 से 35 साल के बीच अगर आपकी उम्र है तो आप आवेदन कर सकते हैं और आवेदन शुल्क आपको बता दें, सामान्य और OBC उम्मीदवारों के लिए ₹300, SC ST और EWS उम्मीदवारों के लिए ₹150 और PWD उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है। अंतिम तिथि आपको बता दें 6 जुलाई 2026 इसकी आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट sssc.uk.gov.in पर संपर्क करें। वेबसाइट एक बार फिर से आपको बता दें, sssc.uk.gov.in।
0: अगला रोजगार समाचार है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 116 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार अंतिम तिथि 20 जुलाई 2026 तक फॉर्म भर सकते हैं hindustanpetroleum.com पर। वेबसाइट है hindustanpetroleum.com। इसमें सीनियर ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्यूटी मैनेजर सहित पोस्ट शामिल हैं। इस भर्ती के लिए एक्सपीरियंस और फ्रेशर दोनों अप्लाई कर सकते हैं।
1: और अगला रोजगार समाचार है साथियों, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF के द्वारा ASI फार्मासिस्ट, ASI एक्सरे टेक्नीशियन और ASI लैब टेक्नीशियन के कुल 24 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। बात करें योग्यता की साथियों, आपके पास ASI फार्मासिस्ट के पदों के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप 12वीं उत्तीर्ण होने चाहिए। डिप्लोमा या डिग्री इन फार्मेसी के साथ आप रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट होने चाहिए। ASI एक्सरे टेक्नीशियन के पदों के लिए आप 12वीं उत्तीर्ण होने चाहिए और दो साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए रेडियोग्राफी में। और ASI लैब टेक्नीशियन के पदों के लिए 12वीं उत्तीर्ण के साथ 2 साल का डिप्लोमा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में आपके पास होना चाहिए और आपकी उम्र 18 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदन शुल्क आपको बता दें साथियों,

0: सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये और इनके साथ एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है और अंतिम तिथि रहेगी साथियों आवेदन करने की 7 जुलाई 2026। और वेबसाइट आपको बता दें cisfrect.cisf.gov.in। वेबसाइट एक बार फिर से आपको बता दें cisfrect.cisf.gov.in।
1: अगला रोजगार समाचार है, IBPS ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 745 रिक्त पदों पर भर्ती जारी कर दी है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं जिसकी आखिरी डेट 21 जुलाई 2026 है। ये भर्तियां बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक सहित अन्य बैंक में की जाएगी। IBPS में स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भर्तियां IT ऑफिसर स्केल 1, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर स्केल 1, राजभाषा अधिकारी स्केल 1, लॉ ऑफिसर स्केल 1, HR या पर्सनल ऑफिसर स्केल 1 और मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1 के पदों पर की जानी है। प्री परीक्षा अगस्त 2026 को आयोजित की जाएगी और रिजल्ट सितंबर या अक्टूबर 2026 में आयोजन किए जाएंगे। मेंस परीक्षा नवंबर 2026 में आयोजित की जाएगी और रिजल्ट भी नवंबर 2026 में जारी किया जाएगा। वेबसाइट है www.ibps.in। वेबसाइट दोबारा बता देते हैं www.ibps.in। उम्मीदवार के पास पोस्ट वाइज ग्रेजुएशन या मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, आयु 20 वर्ष से 30 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है।
0: कार्यक्रम में रोजगार समाचार और भी हैं साथियों, लेकिन आइए आपको सुनवा देते हैं दूर गगन की छाँव में फिल्म से गीत। गाया है किशोर कुमार ने और गीतकार और संगीतकार भी हैं किशोर कुमार।

0: साथियों, अभी आपने सुना दूर गगन की छांव में फिल्म से गीत गाया था किशोर कुमार ने। गीतकार और संगीतकार भी थे किशोर कुमार। और बढ़ते हैं साथियों अगले रोजगार समाचार की तरफ। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा के द्वारा रिकॉर्ड कीपर के 15 पद और स्टोर कीपर के 18 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। बात करें योग्यता की, साथियों आप 12वीं उत्तीर्ण होने चाहिए। टाइपिंग स्पीड भी अनिवार्य है और इसके साथ आपके पास CCC सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए और आवेदन शुल्क सामान्य OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए ₹1,298 और SC ST उम्मीदवारों के लिए ₹944 आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। अंतिम तिथि रहेगी साथियों आवेदन करने की 10 जुलाई 2026 और वेबसाइट आप नोट करें gims.ac.in। वेबसाइट एक बार दोहरा दें साथियों gims.ac.in।
1: अगला रोजगार समाचार है, UPSC ने ड्रग इंस्पेक्टर के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 17 जुलाई 2026 तय की गई है। इसके लिए आयु सीमा 30 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्ग के लिए आयु सीमा में छूट नियमों के अनुसार दी जाएगी। संगठन का नाम है CDSCO। पदों की संख्या रहेगी 186। ऑफिशियल वेबसाइट है upsc.gov.in। वेबसाइट आपको दोबारा बता दें upsc.gov.in।
0: और अगला रोजगार समाचार है साथियों, हाईकोर्ट ऑफ दिल्ली के द्वारा हायर जुडिशियल सर्विस के 27 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आपके पास LLB की डिग्री के साथ 7 साल का अनुभव एज ए एडवोकेट होना चाहिए। 35 से 45 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए और अंतिम तिथि रहेगी साथियों आवेदन करने की 15 जुलाई 2026 और वेबसाइट आप नोट करें dillihighcourt.nic.in। वेबसाइट एक बार फिर से आपको बता दें dillihighcourt.nic.in।
1: अगला रोजगार समाचार है, IBPS ने प्रोबेशनरी ऑफिसर के ढेरों पदों पर भर्ती निकाली है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। उम्मीदवारों का चयन प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त कर चुके उम्मीदवार निकाली गई पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। कम से कम आयु सीमा 20 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष तय की गई है। इसी के साथ रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को आयु सीमा में छूट दी गई है। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक आदि सार्वजनिक क्षेत्र की भर्तियां को भरेगा। पदों की संख्या 6000 से अधिक है। वेबसाइट है www.ibps.in।
0: आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं साथियों, दीजिएगा इजाजत अपने साथी ऋषिता और दीपांशु को।
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा संसार, आकाशवाणी का ही रोहतक केंद्र है। शाम के 6 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार। समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
1: पूरी तरह चालू होने पर इस केंद्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप हो जाएगी। इससे मेमोरी और स्टोरेज समाधानों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण का केंद्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है। श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया के संघर्ष ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया है। भारत का समय पर लिए गए निर्णय, प्रभावशाली रणनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंधन ने देश को इस संकट पर काबू पाने योग्य बनाया है।
2: हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरी के सामर्थ्य पर फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरी को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया।
1: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण। साहित्य भारती पत्रिका साहित्य भारती, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। रात 10 बजे आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों कार्यक्रम हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

कृषि जगत आप सुनेंगे शाम 6:20 पर, ग्रामीण संसार कार्यक्रम सुनिएगा शाम 7:00, रात 8:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत, फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम 7:30 पर, रात 9:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम एक फिल्म से। ये थे आज के शेष कार्यक्रम।

अब सुनिए कल के कार्यक्रमों का विवरण। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम लंदन में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले जाने वाले आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट मैच के फाइनल मुकाबले का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे शाम 7:30 पर। ये प्रसारण रिले किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

प्रातः 7:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे। युवा संसार कार्यक्रम सुनेगा शाम 5:30 पर। किसान भाई अपना कार्यक्रम कृषि जगत सुनेंगे शाम 6:20 पर। ग्रामीण संसार कार्यक्रम रहेगा शाम 7:00। दोपहर 2:30 पर होगा कार्यक्रम खेत खलिहान।

सुगम संगीत आप सुनेंगे प्रातः 7:15 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक कलाकार आप सुनेंगे प्रातः 9:00। दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे फ़ोन इन कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात 10:45 पर। ये थी हमारे केंद्र से आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। शाम के 6:10 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से।

नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राजस्थान और हरियाणा सरकार मिलकर राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र तक पानी पहुंचाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। स्वदेशी लोकोमोटिव उत्पादन में भारत ने कीर्तिमान स्थापित किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स के छात्रों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपनी कलम का ताकत का इस्तेमाल ईमानदारी से करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने लाडवा विधानसभा के कई गांवों में ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। और लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा, शुद्ध एवं त्रुटि रहित मतदाता सूची लोक

0: लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के पचपदरा में कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान भारत के समय पर लिए गए निर्णय, प्रभावशाली रणनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंधन ने देश को इस संकट पर काबू पाने योग्य बनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां कई देश ईंधन की कमी से जूझ रहे थे, वहीं भारत ने संकट का सटीक आकलन किया, एक प्रभावी रणनीति तैयार की और देश की ऊर्जा सुरक्षा की रक्षा के लिए अपनी राजनयिक शक्ति का इस्तेमाल किया। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में जल संकट के समाधान पर श्री मोदी ने कहा कि लंबा इंतजार अब समाप्त होने वाला है। राजस्थान और हरियाणा सरकार मिलकर शेखावाटी तक पानी पहुंचाएंगे। हाल ही में दोनों राज्यों में इस बारे समझौते पर मोहर लग चुकी है।
1: इस समझौते के तहत हथनी कुंड बैराज से पानी राजस्थान लाया जाएगा। इसके लिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसका लाभ सीकर, चूरू, झुंझुनू और आसपास के पूरे शेखावटी क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिलने वाला। इस परियोजना पर लगभग 34,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथियों, आने वाले समय में अपर यमुना बेसिन में रेणुका, लखवाड़ और किशाऊ बांधों का निर्माण पड़ा होने पर राजस्थान को पानी का और लाभ होगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में एक निजी कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 से वर्तमान में रक्षा निर्यात लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है।
2: मेक इन इंडिया आज सफलता के नए कीर्तिमान बना रहा है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में पहले केवल 18,000 करोड़ रुपए की वैल्यू की थी, जो आज 28 गुना बढ़कर 5.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। मोबाइल एक्सपोर्ट्स तो करीब 163 गुना बढ़कर 2.6 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। साथियों, 2014 तक भारत 50,000 करोड़ के आसपास के ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट करता, आज भारत एक साल में 1,20,000 करोड़ रुपए के ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत ने 100 से अधिक देशों को इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक्सपोर्ट शुरू किया है। वर्ष 2026 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 8-9 साल पहले तक हमारा यह डिफेंस प्रोडक्शन केवल 46,000 करोड़ है।
0: रक्षा मंत्री ने भारत की व्यापक विनिर्माण उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि स्वदेशी लोकोमोटिव उत्पादन में भी भारत ने कीर्तिमान स्थापित किया है।
2: आज भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने स्वदेशी हाई हॉर्स पावर लोकोमोटिव बनाया है। इतना ही नहीं, पहली बार दुनिया में इस इंजन को ब्रॉड गेज ट्रैक पर सफलतापूर्वक संचालित करने का कीर्तिमान भी भारत ने ही स्थापित किया है।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री आज पंचकुला में प्रतिष्ठित पेशेवर कोर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट के छात्रों के राष्ट्रीय सम्मेलन प्रज्ञान 2026 को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। श्री नायब सिंह ने कहा कि आज भारत की दुनिया में वो पहचान बनी है जो गत 55 वर्ष में नहीं बनी।
3: युवा साथियों, 2014 से लेकर के आज 2026 जिस गति से भारत आगे बढ़ रहा है, जिस गति से पहचान दुनिया के अंदर भारत ने बनाई है, मोदी जी की जो कार्यशैली है, मोदी जी का विजन एक एक कदम ऊपर भारत को मजबूत करने वाला कदम होता है। प्रधानमंत्री जी ने द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की कार्यक्रम में आए थे, एक बात कही थी, आपके हस्ताक्षर की वैल्यू इतनी है, प्रधानमंत्री जी के हस्ताक्षर से भी ज्यादा, आपका एक हस्ताक्षर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती की तरफ ले जाता है।
0: उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपनी कलम की ताकत का इस्तेमाल ईमानदारी से करने, हर एक हस्ताक्षर देश के निर्माण के लिए करने का और विकसित भारत के सबसे मजबूत सिपाही बनने का संकल्प लेने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश में हर महीने रिकॉर्ड GST संग्रहण हो रहा है, जो देश की बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति का प्रतीक है। कर व्यवस्था को मजबूत बनाने में चार्टर्ड अकाउंटेंट का बड़ा योगदान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हर तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्य के विवेक और निर्णय क्षमता को प्रभावित नहीं कर सकती। तकनीक से डरना नहीं है,

0: बल्कि तकनीक को अपना हथियार बनाना है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज लाडवा विधानसभा के गांव खेड़ी, दबदलान, घलोड़ी और भालड़ में ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने जन समस्याएं भी सुनी। मुख्य समस्याएं बिजली के कट व गांव के रास्तों को लेकर थीं। मुख्यमंत्री ने सभी समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया। उनके साथ हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष धर्मवीर मिर्जापुर व पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा भी मौजूद रहे। हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सही, प्रमाणिक एवं अद्यतन रूप से दर्ज करना है, ताकि लोकतंत्र की पारदर्शिता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। वे हिसार में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शुद्ध एवं त्रुटि रहित मतदाता सूची लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है।
1: देखिए, SIR में सारे के सारे वोटर अभी नए बनने हैं और आपके चैनल के माध्यम से भी सबसे निवेदन करूंगा कि अपने अपने वोटर फार्म फिल करके, चाहे वो ऑनलाइन करें, चाहे वो जो BLO जो घर घर दे रहे हैं फार्म, वो भर करके अपने वोट, नए वोट बनवाने का काम करें। SIR जो है इसमें कोई भी फर्जी वोट है वो काटे जाते हैं, नए वोट है वो बनाए जाते हैं और जिन घुसपैठियों के जो वोट बन गए हैं वो वोट भी उसमें काटे जाएंगे।
0: हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने बरवाला में संत शिरोमणि कबीरदास जी महाराज के नाम पर एक चौक का निर्माण किए जाने की घोषणा की है। वे आज हिसार के बरवाला में संत शिरोमणि कबीरदास महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में संत महापुरुष विचार प्रसार योजना के तहत संतों और महापुरुषों से जुड़े महत्वपूर्ण दिवसों को पूरे सम्मान और गरिमा के साथ मना रही है। इन आयोजनों के माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी को अपने संतों और महापुरुषों के जीवन, संघर्ष, त्याग और उनके महान विचारों से प्रेरणा मिलती है। मंत्री ने कहा कि संत कबीरदास जी केवल एक संत ही नहीं बल्कि समाज सुधारक, महान चिंतक और मानवता के सच्चे उपासक थे। मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कल से 8 जुलाई तक भारी बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना व्यक्त की है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। आज भी चंडीगढ़ सहित कई जगह हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत मिली। मॉनसून के आगमन के बाद हुई वर्षा से अधिकतम तापमान में ही गिरावट दर्ज नहीं हुई। किसानों को भी फसल की बुवाई में लाभ मिलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राजस्थान और हरियाणा सरकार मिलकर राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र तक पानी पहुंचाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा। स्वदेशी लोकोमोटिव उत्पादन में भारत ने कीर्तिमान स्थापित किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स के छात्रों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपनी कलम की ताकत का इस्तेमाल ईमानदारी से करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने लाडवा विधानसभा के कई गाँवों में ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा, शुद्ध एवं त्रुटि रहित मतदाता सूची लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सारे भण भाइयों ने आनंद भाई की राम राम। और फिलहाल भाइयों मौसम की अगर बात करी जाए तो जो अपना मौसम है लगभग पूरा हरियाणा प्रदेश में भाई ये माना जाए कई भी लगभग अपना दो चार दिन का दौरान तो भाई हल्की फुल्की बूंदाबांदी तेज़ हवाओं के साथ कितने न कितने

0: गरज से गरज चमक के साथ बूंदाबांदी किया कर रहे हैं। और जब मानसून की बात आवे तो भाई लगभग अपना जो 6 से लेकर और 8 तारीख तक जो हरियाणा प्रदेश है उसमें भाई मानसून की दस्तक होगी। तो जो भी अपने भाई दिनचर्या की कृषि से जुड़े हुए काम हैं, चाहे भाई भाई कितबरानी इलाके में बरसात के बाद में भाई बाजरे की बिजाई करेंगे, अरे चारे हम भाई कितने बाजरे की करेंगे, कितने ज्वार की, तो ये अपना लगभग चालदार है भाई, क्योंकि जोड़ा बरिया इलाका है। जड़े धान वाली बेल्ट की बात करी जाए तो भाई अपना सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, जड़े भी अपने भाई धान के क्षेत्र हैं, उड़े भैयान लगाने शुरू भी कर रखे हैं, कहीं कहीं लगा लिए। और अपना जो रोहतक का, कुछ भिवानी का, कुछ सज्जर साइड का, अपना जो नहरी वाला इलाका है, जड़े ऊंच नीच के कितने भाई किले हैं, जड़े चौवा ऊपर है, बड्ढा का किले हैं, तो उड़े भाई थोड़ा आगे इतमाम लगा लिया तो ठीक रहो है, वरना फिर क्यों है कि जब पानी बरसात ज़्यादा हो जाए, झील जो के किले में भाई पानी भर जाए तो जो पौधे हैं वह मार मार की आशंका हो जाए। तो इस हिसाब से अपने भाई दिनचर्या के काम हमने देख के चालने हैं, थोड़ी आगे इतम लगा लिया झील जोक वाले किले में। और फिर क्योंकि जो भी अपना हरियाणा प्रदेश है भाई, कितने बरिया इलाका है तो भाई कितने नरमसार धरती भी है, टिब्बासार धरती भी है, तो वहाँ भी बरसात के बाद में बहुत से भाई आगे चाल की जब भी कोई खेती बाड़ी में हर एक चीज़ की फसल किसान भाई ले हुए है, जड़े जड़े इन्हों देखा है कि भाई खास तौर पे बाजरा के अलावा भी भाई कुछ भाई मूंगफली की जो फसल है वो लगाना चाहो हैं। तो मूंगफली में भी यो देखा जा भाई बहुत सी वराइटियाँ हैं, खेत ने अच्छा साफ सुथरा बाज जोड़ की भाई हम तैयार करा हाँ, ठीक किस्म का हम चुनाव करा हाँ, तो इसी प्रकार से एक पूर्व प्रसारित बातचीत है। तो शुरुआत करेंगे भाई अपनी जो मूंगफली की उन्नत किस्में हैं और कास्ट के बारे में। डॉक्टर अशोक जी अपने चौपाल में आए थे, एक पूर्व प्रसारित बातचीत है, ये भैया ने सुनवा दी है।
1: भाई बातचीत करेंगे मूंगफली की किस्में और कास्ट के बारे में। इसकी जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर अशोक कुमार डहिनवाल जी। आप हैं कार्यरत क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र बावल रेवाड़ी में। डॉक्टर साहब स्वागत आपका।
2: धन्यवाद सुरेंद्र सर जी।
1: तो डॉक्टर साहब देखो, मूंगफली की जहाँ तक बात आवे है किस्मों की
2: जी,
1: इसमें पहले तो ये बताओ जो उन्नत किस्म है वो कौन सी है?
2: सर जो मूंगफली है वो हमारे देश में मुख्यतः जो तिलहन फसलें हैं उनमें से एक है। तो हमारे इधर जो हरियाणा का क्षेत्रफल क्षेत्र है वो राजस्थान से जितने भी नज़दीक एरिया है उन सभी की किस्में इसमें सम्मिलित होती है। मेनली इसमें तीन तरह की किस्में होती है। एक तो होती है स्पेनिश, जिसको हम बोलते हैं, जिसके जो मेन जो तना होता है उस पर फ्लावर आते हैं। दूसरी होती है वर्जीनिया टाइप, जिसमें तने के साथ साथ शाखाओं पर भी फूल निकलते हैं। तो जो जिस पे तने पे फूल निकलते हैं उसकी किस्में हैं TG37A।
1: अच्छा।
2: ये बॉम्बे की एक वैरायटी है, इसमें जो पैदावार आती है वो 20 क्विंटल के लगभग आती है।
1: 20 क्विंटल एक किलो में?
2: नहीं जी, हेक्टेयर में।
1: एक हेक्टेयर
2: 8 क्विंटल एक किले के लगभग।
1: अच्छा अच्छा।
2: तो इसमें जो एक वो आती है छिलाई क्षमता, सेलिंग परसेंटेज बोलते हैं, वो लगभग इसमें 68% होती है। तो जो अपने पास पोड आएंगे, वो जो कर्नल आएंगे, जो पोड आती है वो इसमें इसको मल्टीप्लाई होकर लगभग अपने पास 20 क्विंटल के लगभग हेक्टेयर की आती है।
1: अच्छा।
2: तो उसके बाद इसमें ऑयल कंटेंट है, जो तेल की मात्रा होती है वो 48% के लगभग होती है। उसमें जो ये मैच्योर हो जाती है वो लगभग 120 दिन में हो जाती है। मूँगफली की जो सारी किस्में हैं लगभग इनमें जो तेल की मात्रा है वो 45% से लेकर 55% तक होती है। अभी कुछ समय पहले ही 2023 में 2024 में 5-6 किस्में बहुत अच्छी आई है। जैसे कि अभी जो आई है वो आई है उदयपुर से, एक नई किस्म आई है वो है प्रताप मूंगफली 1, प्रताप मूंगफली 2, और पिछले साल ही आई प्रताप मूंगफली 3, जिसकी पैदावार लगभग 33 क्विंटल के लगभग है हेक्टेयर की।
1: 33 क्विंटल पर हेक्टेयर?
2: पर हेक्टेयर लगभग 12 से 12.5 क्विंटल
1: तो
2: एक किले की।
1: या तो डॉक्टर साहब इतने डोडी पैदावार दे
2: सभी में ऐसा ही है सर। ये तो अभी तो वो जिसमें तने में फूल आते हैं वो किस्में हैं।
1: अच्छा।
2: दूसरे जिसमें तने के साथ साथ शाखा में भी फूल आते हैं उसको हम वर्जीनिया टाइप बोलते हैं। हमारे जो क्षेत्र है राजस्थान, गुजरात, इन सब इलाकों में लगभग जो वर्जीनिया टाइप की होती है, जो फैलने वाली होती है, गुच्छे में जो लगती है, वो किस्में यहाँ पे लगाते हैं। उन किस्मों में भी जो हमारे राजस्थान के गंगानगर का एक क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है, गंगानगर, श्री गंगानगर के नाम से, उसकी 3-4 किस्में हैं, जैसे HNG 10HNG, 69HNG, 123। ये तीनों किस्में फैलने वाली है और गुच्छे वाली किस्में हैं।
1: अच्छा।
2: तो इनमें भी लगभग

0: सारों में 28 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर इनकी पैदावार है, जो कि एक किले में लगभग आपकी 10 क्विंटल से लेके 12 क्विंटल तक रहती है।
1: इसमें डॉक्टर साहब देखो, देखा जा तो 10 क्विंटल 12 क्विंटल एक किला के हिसाब से जब हमने पैदावार मिल जाए है ना मूँगफली की,
0: जी
1: तो बहुत है। और जैसे पहले जो किस्म होया कर दी वो तो बहुत कम पैदावार दी आ कर दी, लेकिन इनमें जो क्वालिटी है, जो तेल की मात्रा है, क्या उनमें उनके बराबर है?
0: सर, पहले जो किस्में थी उनमें लगभग हम 6 से 7 क्विंटल एक किले में लेते थे। अब जो किस्में आई है उनमें हम लगभग एवरेज तो वैसे 10 का है, 8 से 12 तक रेंज है,
1: जी
0: 12 क्विंटल तक भी लेते हैं, तो उसमें जो तेल की मात्रा है वो 53 तक चली गई है, 53% तक चली गई
1: तो
0: है।
1: फिर अच्छी
0: पहले
1: बात है ये तो।
0: बहुत अच्छी से है सर,
1: हाँ
0: और इसमें दो चीज़ें और इम्प्रूव करी है, बहुत उसमें विकसित करी गई है। एक तो आयरन कंटेंट जो लौह तत्व होता है वो, और एक जिंक कंटेंट। इन जो दो दो किस्में मैंने अभी बताई है, एक दुर्गापुरा है जयपुर में, वहाँ की 3-4 किस्में हैं, राज मूंगफली के नाम से आती है सारी। किसान भाई इन सब जो किस्में हैं दुर्गापुरा से, जयपुर से, गंगानगर से, आसपास जो इलाके उनसे ले सकते हैं। राज मूंगफली 2 है, राज मूंगफली 3 है, अभी पिछले साल आई राज मूंगफली 5 और 6। उसमें उन दोनों किस्मों में ये जो लौह तत्व है और जो जिंक तत्व है, इनकी मात्रा लौह तत्व की तो 78 PPM से ज़्यादा है, और जिंक इसके 4.5% से भी ज़्यादा है।
1: इसका भी डॉक्टर साहब जो अपने ये सेंटर हैं,
0: हाँ जी
1: जो अनुसंधान सेंटर हैं, क्या इन पर भी मिल जाता है?
0: सर, अनुसंधान केंद्र पे हमारे मूंगफली में, हमारा जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हरियाणा, उसमें अभी इस पिछले साल 2023 में अगस्त में एक मीटिंग हुई थी, उसमें हमारी नई किस्म है GNH 804, ग्राउंडनट हरियाणा 804 के नाम से, उसको
1: अच्छा।
0: आइडेंटिफाई हो गया, मतलब वो अब आगे गई है, वो रिलीज होने के, इस साल रिलीज हो जाएगी, तो अगले साल से उस किस्म का बीज हम किसान भाई जितने भी हैं वो बावल सेंटर रेवाड़ी के अंदर से भी ले सकते हैं इस किस्म का
1: वो
0: बीज।
1: तो ले सके हैं। जो ये पहले आपने किस्म बताई अच्छी, जो पैदावार दें लगभग 32-33 क्विंटल के आसपास एक हेक्टेयर से मिल जाती है, क्या वो किस्में अपने सेंटरों पे मिलती हैं
0: सर
1: या ये बाहर से ही लेनी
0: नहीं,
1: पड़ती
0: ये
1: हैं?
0: बाहर से लेनी पड़ेंगी सर, गुजरात की कुछ वैरायटी है, कुछ किस्में, और राजस्थान की बाहर से लेनी पड़ेगी। इस
1: अच्छा।
0: साल हमने बाहर से सीड मंगाया है, FLD करते हैं, जैसे ICAR हमें देता है FLD करने के लिए, तो FLD के लिए तरह उसको प्रथम पंक्ति जो प्रदर्शन होता है उसके लिए हमने इस साल 30 क्विंटल बीज लिया है, तो उसका बीज हम किसान भाइयों को अगले साल से दे सकते हैं उन्हीं वैरायटियों का।
1: वो तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन कहाँ संपर्क करें हमारे जो किसान भाई हैं? मुख्य समस्या तो बात यह आ जा है कि यहाँ किस्म तो बता दी जहाँ है, लेकिन वो किस्म बार जो हम लेना चाहते हैं लेकिन वो मिल नहीं पाती, दिक्कत
0: सर
1: ये है।
0: इसी का बता रहा हूँ मैं, इस
1: हाँ।
0: साल से जो अगले सीजन आएगा, अगला जो वर्ष आएगा, उस साल से बाउल जो सेंटर है ना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, जो तो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, उसका क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र बाउल से ले सकते हैं किसान।
1: अच्छा,
0: हाँ जी सर,
1: तो उसमें डॉक्टर साहब एक एकड़ के लिए,
0: हाँ जी
1: हम बात एकड़ की कर रहे हैं, तो उसमें एक एकड़ के लिए कौन सी किस्म का कितना बीज लेना उचित रहे?
0: सर, जितनी भी किस्में मैंने अभी बनाई बताई है इनमें लगभग सभी में 35 किलो से 40 किलो बीज एक किले के लिए काफ़ी रहेगा। जो भी उन्नत बीज है किसान भाई उनको बीज उपचार जरूर करें। ये जो मैंने किस्म बताई, राज मूंगफली करके, HNG है, ये जो सारी किस्में, ये सारी किस्में का बीज बाउल सेंटर से नेक्स्ट अगले साल से मिलने स्टार्ट हो जाएगा, और किसान भाई बीज उपचार जरूर करें। बीज उपचार में 3-4 चीज़ें हैं सर, जैसे टैबुकेनाजोल से करें, ये दवाई का नाम है, इससे करें तो 1.5 ग्राम 1 किलो बीज का, अगर कार्बेंडाजिम से करें तो 2 ग्राम 1 किलो बीज का, और अभी जो 3-4 एक्सपेरिमेंट हमारे वहाँ पे शोध हुए हैं तो उसमें हमें पता चला कि जो कैप्टन एक दवाई, उससे अगर करते तो और बढ़िया रिजल्ट आते, इसमें जो तना गलन है, इसमें जो कोलर रोट है, वो सारी बीमारी उससे थोड़ी कम आती है।
1: उसमें फिर कैप्टन की मात्रा बीज के
0: तीन
1: हिसाब से कितनी
0: तीन
1: है?
0: ग्राम पर किलो बीज के हिसाब से।
1: अच्छा, मान लो 35 या 40 किलो बीज
0: हाँ,
1: बताया आपने,
0: तो उसमें लगभग 100 से 120 ग्राम का,
1: 120 ग्राम के
0: हाँ, एक
1: आसपास
0: सौ बीस ग्राम के
1: हमने
0: आसपास
1: वो लेनी पड़ेगी दवाई।
0: हाँ जी।
1: और फिर उसको, फिर बीज का उपचार की विधि क्या रहेगी?
0: बीज के उपचार के सर, जब भी हम बीज, जो मूंगफली है वो पौध में आती है, तो पहले जब भी हमें बीज तैयार करना, तो 15 दिन पहले मूंगफली को छील ले अच्छे से, और उसको उसके अनुसार ही, कैप्टान कर रहे हो तो 3 ग्राम 1 किलो बीज के अनुसार उसको बिजाई से पहले उपचार करना है।
1: अच्छा।
0: उसके साथ एक इसमें बीमारी आती है, सफ़ेद जो लट होती है वो बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र के लिए खतरनाक बीमारी, वो इंसेक्ट पेस्ट है, तो उसके लिए क्लोरोपाइरीफोस जो दवाई है 15 ml 20 cc वाली, वो भी हमें उसके साथ भी बीज उपचार करना है, ताकि आगे जाके किसान भाई किसी भी तरह की जो भी कीटनाशक, कीट की प्रकोप है, बीमारियों का प्रकोप है, उससे बच सके।
1: 15-20 ml पर किलो के हिसाब से
0: हाँ, 1 किलो के बीज के
1: वो
0: हिसाब से,
1: क्लोरोपाइरीफास
0: हाँ,
1: दवाई,
0: क्लोरोपाइरीफोस 15 ml
1: 15 ml
0: 1 किलो बीज, और कैप्टान 3 ग्राम 1 किलो बीज।
1: ये लगभग 600 ml के नज़दीक होगी
0: हाँ जी सर,
1: है, तो उतने तो उसका जो हम

0: उस तो फिर दीमक का भी फर्क पड़ जाएगा
1: हाँ,
0: उसमें।
1: दीमक का भी है सर, क्लोरोपाइरीफोस का दीमक भी, और जो सफ़ेद लट है उसके लिए एक ही है हमारी यूनिस्टीम जो पैकेज में, एक ही दवाई क्लोरोपाइरीफोस 20 cc जो 15 ml 1 kg के हिसाब से। अगर वहाँ नहीं कर पाते किसान भाई गलती से, तो थोड़े दिनों बाद 15-20 दिन बाद जैसे जब भी आपको दीमक का प्रकोप लगे या लगे आपके वहाँ पर सफ़ेद लट आ रही है, तो आप इसकी ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं सर।
0: अच्छा,
1: हाँ जी
0: फिर उससे तो फिर ये बीज का उपचार अच्छा रहेगा।
1: हाँ, बीज का उपचार तो
0: बीज
1: सर
0: का उपचार
1: सबसे
0: हो
1: अच्छा,
0: जाए, सबसे बढ़िया हो
1: सबसे बढ़िया
0: जाए,
1: ही होता है सर।
0: क्योंकि बाद में तो मान लो ड्रेंचिंग हम कर भी
1: हाँ,
0: रहे हैं तो उससे इतना बढ़िया वो नहीं है,
1: उससे पौधे भी मरने का खतरा
0: मैं
1: रहता
0: वो
1: है बाद
0: खुद
1: में।
0: सेटिस्फाई वाली बात है, नहीं तो इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं
1: जी
0: आएगा
1: सर,
0: उसका। तो डॉक्टर साहब देखो, जो हमने मान लो उसमें फिर बिजाई किस तरीके से करें उसकी।
1: सर इसमें सबसे पहले तो हमें मिट्टी और जलवायु को ध्यान रखना है। मिट्टी ऐसी हो जैसे बलुई मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी होती है, सभी प्रकार के जो मिट्टी है उसमें मूंगफली की बिजाई हो सकती है। लेकिन हमें इसमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस भी खेत में हम मूंगफली की बिजाई लेना चाह रहे हैं उसमें जल निकासी अच्छी हो। अगर जल का भराव होगा तो मूंगफली के जो पौधे हैं वो निकलने से पहले ही वो ख़राब हो जाते हैं और उसमें पैदावार कम आती है। तो एक तो जल निकासी, और दो रेतीली ज़मीन में काफ़ी अच्छे से मूंगफली की पैदावार ले सकते हैं हम। और बीज का मैंने बता दिया, अलग अलग किस्मों का बीज इसमें लगभग आपके 35 से 40 किलो लगता है 1 किले में, और बीज उपचार अभी बताया मैंने। उसके बाद हाँ
0: जितना भी हम बीज ले रहे हैं उसी के
1: जी,
0: हिसाब से जो दवाई है वो ले,
1: हाँ
0: क्या
1: दवाई
0: इसमें
1: के
0: मिट्टी का उपचार भी हम कर सकते हैं, जैसे
1: नहीं, इसमें
0: इसमें मिट्टी
1: मिट्टी का नहीं,
0: के पूरे के
1: अभी
0: पूरे खेत का।
1: आप पूरे खेत का सर मिट्टी में अगर सफ़ेद लट और जो ये एफिड्स का जो प्रभाव होता है उसके लिए एक है
0: अच्छा,
1: उसमें आप जब भी आप अपने ग्रीष्मकालीन मूंगफली की खेती करें उससे पहले अपना जो खेत है उसको मिट्टी पलटने वाले हल से एक बार जरूर जुताई करें उसकी। उसके बाद 2-3 जुताई करें ताकि जो ये लट है इनके जो प्यूपे हैं सफ़ेद लट है इनके प्यूपे बाहर आ जाते हैं और वो पक्षी उनको चुग ले जाते हैं।
0: जी
1: तो ये एक मिट्टी का ये वाला जो रोल है ये मूंगफली में बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
0: जी और जिस समय हम खेत की तैयारी कर रहे हैं उसमें पहले एक गहरी जुताई कर दें, उसके बाद फिर 2-3 उसी
1: बिल्कुल
0: कर दें,
1: सर।
0: इसका सही उचित समय क्या रहेगा डॉक्टर साहब बीजाएगा?
1: सर इसका हमारे हरियाणा के हिसाब से 15 जून से लेके और 30 जून तक का समय उपयुक्त है। वैसे तो 15 जुलाई तक भी करते हैं लेकिन 15 जुलाई के बाद अगर किसान भाई करते हैं तो उसमें पैदावार की कमी आने के पूरे पूरे चांस है।
0: जी, तो उसके लिए बीज का पहले अपना इंतज़ाम कर लें,
1: हाँ जी,
0: और जो है जहाँ हम बिजाई कर रहे हैं अपना बीज का उपचार कर लें।
1: हाँ बिल्कुल सर। ये कि मूंगफली में ना खाद बीज का बहुत वो रहता है, एक तो हमारे जो नाइट्रोजन है जो हम यूरिया देते हैं, यूरिया इसमें सिर्फ 15 किलो चाहिए हमें। अगर जो फॉस्फोरस देनी है हमें तो वो हम SSP के थ्रू ही दे, अगर DAP के थ्रू देंगे तो फिर हमें नाइट्रोजन देने की कोई ज़रूरत तो नहीं है। क्योंकि जो मूंगफली है उसमें पैगिंग होती है, इसमें सुइया बनती है जिसको पैग बोलते हैं, तो उसके बाद उसमें नोड्यूल्स बनते हैं, उसमें नाइट्रोजन की कमी वो पौधा अपने आप पूरी कर लेता है। तो
0: अच्छा।
1: शुरुआत में अगर DAP से हम खाद दे रहे हैं तो हमें नाइट्रोजन देने की जरूरत नहीं है। अगर DAP से नहीं दे रहे हैं, SSP से दे रहे हैं तो हमें नाइट्रोजन देने की जरूरत है। SSP लगभग 125 किलोग्राम लगता है 1 किले में और 13 किलो यूरिया लगता है। और जो MOP है जिससे हम के की
0: म्यूरेट ऑफ
1: पू
0: पोटाश,
1: म्यूटो पोटास है उसका लगभग हम 16 किलो। और इसमें एक सर और है, जैसे ही मूंगफली आगे आगे पैदावार बढ़ती है इसमें जिंक की कमी आने लग जाती है, तो उसके लिए हमें जिंक सल्फेट भी डालना है 10 किलो के हिसाब से 1 एकड़ में।
0: जी। इसमें डॉक्टर साहब जैसे कुरड़िया खाद कुछ हमारे जो किसान भाई डाल रहे, तो वो किस तरह कितना डाल लें, कब डाल लें?
1: अच्छा हाँ सर, ये कि जो कुरडी वाला खाद है इसका सबसे अच्छा वो है, अब हमें एक ये आता है जो ट्राइकोडर्मा आता है ये 1.5 किलो लेना है, और उसको हमें 25 किलो जो गोबर की खाद होती है बीजाई से 15 दिन पहले उसमें डाल देना है ताकि वो
0: अच्छा।
1: अच्छे से गल जाए। और उसके बाद एक अरंडी की खल आती है
0: अच्छा
1: वो लगभग 100 किलो लेने के बाद फिर हमें पूरे जैसे हम खेत तैयार कर रहे हैं जब हम खाद बीज ये खाद डाल रहे हैं उसी टाइम इसको अरंडी की उसमें खली में मिला के डालें, तो जो आपकी बाद की जो तना गलन है, जो आपकी कोलर रोट है, जो पत्तियों पे धब्बे बन जाते हैं, वो दोनों बीमारियों के लिए बहुत ही उपयुक्त है ये चीज़ें।
0: तो ये तो हो गया डॉक्टर साहब ये।
1: जी
0: और उसमें जो रासायनिक खाद है उसमें बता दिया कि मान लो हम SSP ले रहे हैं तो 125 किलो,
1: हाँ, 125
0: और DAP
1: किलो
0: ले रहे हैं तो कितना लेना पड़ेगा?
1: DAP ले रहे हैं तो सर 44 किलो DAP लगभग 1 कट्टा मान लो आप, और उसमें फिर आपको 8 किलो यूरिया देनी पड़ेगी।
0: DAP में
1: हाँ
0: भी,
1: जी, नहीं DAP नहीं दे रहे तो
0: DAP
1: फिर नहीं
0: में तो
1: दे,
0: नहीं
1: DAP
0: जरूरत
1: नहीं,
0: ना।
1: अगर SSP दे रहे तो फिर आपको यूरिया देनी पड़ेगी।
0: अच्छा,
1: DAP दे रहे तो उसमें ऑलरेडी यूरिया की
0: हाँ
1: कमी
0: वो
1: पूरी हो
0: तो
1: चुकी है,
0: उसमें 12%
1: उसमें
0: खुद होता है।
1: 16%
0: सो
1: यूरिया भी होती है और
0: जी
1: 40% फॉस्फोरस भी होती है
0: जी
1: सर।
0: तो उसमें तो हमें ये खाद डाल दें और फिर बाद में जैसे ही लगाएं हम उसमें शुरू की सिंचाई कैसे करें, कितने समय के बाद करें?
1: इसमें मूंगफली में जो सिंचाई है वो उसमें लगभग 3-4 सिंचाई चाहिए। अगर किसान भाई

0: के पास अगर एक या दो सिंचाई की है, तो पहली सिंचाई हमेशा जो फूल आते हैं लगभग 30 से 35 दिन पे आते हैं, उस टाइम देनी चाहिए। अगर दो सिंचाई की सुविधा है किसान भाई के पास, तो पहले फूल आने पे, दूसरा जब उसका जो सुइया बननी स्टार्ट होती है, सुइया बननी इसमें लगभग 45 दिन से 90 दिन तक बनना स्टार्ट होती है, तो दूसरी सिंचाई आपको लगभग 50 दिन पे करनी है।
1: जी
0: अगर तीन सिंचाई अगर किसान भाई के पास उपलब्ध है, तो पहली फूल आने पे, दूसरी 50 दिन पे, तीसरी 70 दिन पे। अगर हम ज़्यादा, ये जो फसल है मूँगफली की, ये बारिश पर भी निर्भर करती है। अगर बारिश अच्छी हो रही है, तो दो सिंचाई काफ़ी रहती है सर।
1: इसमें डॉक्टर साहब, बिजाई करने का तरीका कौन सा सही रहे, कितनी दूरी पे करें एक पौधे से दूसरे एक पौधे का, जो फासला वो कितना रखें?
0: सर, मूंगफली की जो बिजाई है वो लगभग हमें 1.5 फुट पे करनी चाहिए,
1: अच्छा
0: 1.5 फुट पे, मतलब 45 इंच पे। और जो पौधे से पौधे की दूरी है वो लगभग 8 इंच होनी चाहिए, जो
1: अच्छा
0: फैलने वाली किस्म है उनके लिए ये है। और जो सिंगल नहीं भी कम फैलने वाली फसलें हैं सर, उनके लिए लगभग 1 फुट और 6 इंच की,
1: जी
0: पौधे से पौधे की दूरी 6 इंच की, और खुड़ से खुड़ की दूरी वो लगभग 30 इंच, 1 फुट के लगभग।
1: जी इसमें डॉक्टर साहब और क्या कुछ ध्यान रखें हमारे किसान भाई? मान लो ये पूरी की पूरी हम ये कह दिया भाई, एक तो किस्म है जो अपनी वो बढ़िया लें,
0: हाँ जी सर,
1: भरोसे की जगह पे लें, मतलब 35 से 40 किलो जो बीज है वो 1 किलो का शायद पूरा है।
0: हाँ जी
1: डीएपी ले रहे हैं तो हमने यूरिया की ज़रूरत नहीं है,
0: बिल्कुल सर,
1: बाकी एसएसपी ले रहे हैं तो हम डी यूरिया
0: यूरिया
1: थोड़ा
0: डालना पड़ेगा
1: दस
0: 13
1: बारह
0: किलो सर।
1: किलो
0: हाँ जी,
1: जो यूरिया है वो ले लें। कुरड़ी की खाद यदि मान लो हम डाल लें तो उसमें क्या कुछ थोड़ी बहुत खाद की कमी करी जा सके?
0: खाद की कमी नहीं सर,
1: अच्छा
0: वो जो आपकी बीमारी आ रही है, तना गलन है, जो आपकी टिक्का डिजीज है, जो लीफ पे धब्बे बन जाते हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट है।
1: अच्छा,
0: हाँ, खाद पूरा इसमें वो
1: खाद
0: लगेगा
1: ये
0: सर,
1: पूरा देना
0: पूरा
1: पड़ेगा
0: देना
1: भले ही
0: पड़ेगा
1: हमने कुरड़िया खाद डाल रखा
0: बिल्कुल
1: है,
0: सर।
1: और जो किस्म है वो तो डॉक्टर साहब बढ़िया आपने बताई है कि
0: हाँ
1: ये
0: जी,
1: कुछ तो अगले साल तो मिलनी शुरू
0: हाँ जी,
1: होंगी। बाकी जैसे आपने प्रताप नंबर 1, 2 या 3 जो बताई हैं
0: हाँ जी, जी
1: उनका बीज कहाँ से ले हो, क्योंकि उनकी पैदावार बहुत अच्छी बता रहे हो
0: हाँ
1: आप।
0: सर, उनका बीज है वो उदयपुर से मंगाना पड़ता है, अभी हमारे पास है नहीं। अगले साल से सारी जो भी अच्छी अच्छी किस्में हैं, राज मूंगफली है 3, 4, 5, तो इनका बीज भी हम दुर्गापुरा से, और जो प्रताप मूंगफली इनका हम उदयपुर से किसान भाइयों के लिए मंगा सकते हैं सर, बावल सेंटर से किसान भाई ले सकते हैं।
1: इसमें डॉक्टर साहब जो पैदावार बढ़ाने का थोड़ा बहुत नुकता है वो क्या बता सको आप हमारे किसान भाइयों को, भाई इससे ये पैदावार के कुछ कारण
0: सर
1: है जो जिनते पैदावार बढ़ गए है?
0: बिल्कुल सर, जो मूंगफली की फसल है, इसमें लगभग और जैसे फसलें हमारे पास है, बाजरा है, मूंग है, इसमें हम निराई गुड़ाई करते हैं, तो मूंगफली की फसल में भी हमें 2 निराई गुड़ाई करनी है, एक 20 दिन पे और एक लगभग 35 दिन पे।
1: अच्छा
0: और किसान भाई, एक स्पेशल जो एक सबसे स्पेशल इसमें चीज़ है, वो है इसकी निराई गुड़ाई आपको इसमें फल जो सुइया बननी स्टार्ट होती है 40 दिन से लगभग 90 दिन पे, तो 40 दिन के बाद आपको बिल्कुल भी निराई गुड़ाई नहीं करनी है। अगर उसमें निराई गुड़ाई करोगे, तो उसकी जो सुई है वो टूटने का डर
1: वो
0: है,
1: कट जाएंगी।
0: वो
1: हाँ
0: कट जाएंगी और आपकी पैदावार बहुत कम हो जाएगी।
1: जी
0: तो
1: जी
0: एक इसमें सबसे अलग जो फसलों में है मूंगफली में, आपकी निराई गुड़ाई आपको 40 दिन के बाद नहीं करनी है बिल्कुल भी सर।
1: अच्छा, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, अच्छी किस्म लें, समय पर बिजाई करें, पूरी उचित मात्रा
0: एक
1: में
0: इसमें
1: करें।
0: सर जो बीमारियों का रहता है,
1: जी
0: इसमें एक तना गलन आता है और एक कोलर रोट आती है। कोलर रोट शुरू की स्टेज में आती है, जो जब पौधा लगभग 30 दिन का रहता है, तो उसमें जो मैंने अभी खाद बताई है, गोबर की खाद, उससे भी काबू हो सकता है। और एक जो आपका बीज उपचार है वो बहुत अच्छा उसमें रोल प्ले करता है,
1: जी
0: तो उसमें हमें बीज उपचार बहुत ज़रूरी है उसका करना। और इसमें जो एफिड भी आते हैं, एफिड जो रस चूसक कीट होते हैं, वो भी कई बार आ जाते हैं, तो वो तभी डालने हैं जब वो आए हैं,
1: जी
0: तभी आपको मेलाथियोन का स्प्रे करना है। मेलाथियोन का लगभग 250 ml, 250 लीटर पानी में तो एक स्प्रे वो करना है।
1: जी
0: अब मैं किसान भाई को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो मूंगफली की खेती करते हैं, तो लगभग इसमें लागत और इसमें प्रॉफिट, फायदा कितना होगा, तो इसमें लगभग शुरू से लागत का स्टार्ट करते हैं हम, तो शुरू में हम बीज कर लेते हैं, पहले खेत की जुताई करेंगे, 2-3 जुताई लगा लो, उसमें हैरोविंग है सारी चीज़ें, तो उसका खर्चा लगभग 3500 रुपये है। तो उसके बाद हम बीज लेते हैं, लगभग बाहर बीज मिलता है 100 रुपये किलो के हिसाब से, तो मैंने बताया आपको 35 से 40 किलो एक के लिए
1: लगभग
0: इसमें
1: चार हजार के आसपास बीज
0: हाँ
1: लगा लो
0: लगभग चार
1: आप।
0: हज़ार के आसपास इसका बिल वो हो गया। फिर हम बिजाई करते हैं, ड्रिल से करते हैं जनरली, तो
1: जी
0: 500-700 का वो खर्चा हो गया, तो 4000 का मोटा मोटा ये खर्चा हो गया, 7000 के लगभग। ठीक है, उसके बाद सर हम गोबर खाद ले रहे हैं, और उसमें जो बेसल डोट डाल रहे हैं, जो शुरुआत की जो यूरिया है, SSP है, उनका खर्चा भी मिला के हम देखें तो लगभग 3500-4000 का उसका खर्चा आ जाता है। 2-3 ट्रॉली डालेंगे तो 2-3 हज़ार का, तो ये सारा मिला के लगभग 7000 का और खर्चा आ गया,
1: जी
0: तो 14000 हो गए। तो उसके बाद हमें एक स्प्रे इसका 30 से 35 दिन पे जो

0: माइक्रोन्यूट्रेंट होते हैं, क्योंकि इसकी जो पत्तियां होती है उसके पत्तियों में ना कई बार सफ़ेद पत्ते आने लग जाते हैं, वो आयरन लोह तत्व जो होता है उसकी कमी होती है, और अगर उसमें पत्तों के बीच में अगर फिर स्पॉट बन रहे हैं तो वो जिंक की कमी है। तो ये जो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जैसे 19-19-19 आ रहे हैं, उसका भी एक स्प्रे, उसका भी
1: फोलियर स्प्रे,
0: वो भी फोलियर स्प्रे एक जरूरी है। तो उसका खर्चा, और आपको मान लो आपके पास कोई भी फंजी वो फफूंद आ रही है, उसका खर्चा, कीटनाशक का खर्चा, ये सब मिलके लगभग 2700 का खर्चा ये है सर। और जो आपकी उखाड़ने में, मूंगफली को उखाड़ने में जो लेबर लगी है तो उसका लगभग 4000 का खर्चा है, और आपको खेत से लेके मंडी तक पहुंचाने का खर्चा वो 1000 रुपए। तो ये सारा जो खर्चा मिला के किसान भाई का लगभग 22700 बनता है। और जो इसकी पैदावार मैंने आपको बताया 8 से 12 क्विंटल होती है, तो हम सब की नहीं मान के अपने एवरेज लेके चलते, तो 10 क्विंटल भी अगर पैदावार हो रही किसान भाई के पास, तो MSP पिछली बार 5850 था मूंगफली का, तो उसके अनुसार उसकी होगी लगभग 58000 की आमदनी। इस बार जो केंद्र, जो सरकार है, उन्होंने MSP 23-24 में 6377 कर दिया है, तो अगर 10 क्विंटल भी एवरेज भी पैदावार ले रहा किसान भाई
1: तो उसका
0: 63000 का लगभग फायदा हो गया, 22700 मान लो, तो उतना आपने लगाया है और फायदा आपको 63000 लगभग हो रहा है, तो जस्ट डबल फायदा हो रहा है सर। तो ये किसान भाइयों के लिए मूंगफली की जो
1: खेती
0: वो बहुत ही लाभदायक है
1: जी। तो डॉक्टर साहब देखो बहुत अच्छे और विस्तृत तरीके से आपने बताया। तो डॉक्टर अशोक कुमार जी आप स्टूडियो में आए, हमारे जो श्रोता भाई हैं उनको बहुत अच्छी बढ़िया जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
2: तो ये सुनी भैया ने मूंगफली के ऊपर बातचीत, अपनी बड़ी बढ़िया खेत की तैयारी हम करें, खास तौर पर देसी खादा का अगर प्रयोग हो जाए तो सबसे बढ़िया रव है, वरना भाई अपनी जो सिंगल सुपर है, DAP है, इनका इस्तेमाल करके। और सबसे ज़रूरी है कि अपना जो बीज उपचार है, हर एक फसल का बीज उपचार का अपना एक अलग महत्व रो है, क्योंकि शुरू से लेके और आखिर तक कुछ कीट पतंगे बीमारियाँ इसमें आ जाए हैं तो काफ़ी रोकथाम करे है यो। और जो हम परंपरागत फसलें ले रहे हैं उससे थोड़ा अलग हटकें अगर हम काम करेंगे, चाहे वो मूँगफली खेती है, कोई सहायक रोज़गार है, तो किसान भाई थोड़ी सूझबूझ के साथ और जो भी अपनी फसल बाड़ी है उसका लेखा जोखा हम ठीक तरीके से रखेंगे, क्योंकि हमने जो शुद्ध मुनाफा है और जो उसकी लागत है उसका मालूम ही होना चाहिए प्रॉपर। हमने एक बही खाता का महत्व के बारे में चाहे हम कह ले, क्योंकि खेती बाड़ी में हम जब बही खाता का महत्व समझाएंगे और उन्हें लेखा जोखा हम रखेंगे तो एक शुद्ध आमदनी और जो खर्चा है उसका हमने अलग से मालूम होगा। और फिर इसके हिसाब से किसान भाई ये भी सोच के चाल लगा कि भाई हमारा कितना खर्चा है, कितनी आमदनी हुई है। और जो हम परंपरागत फसल एक कहने के भाई दूसरे के कहने के ऊपर एक खेती बाड़ी में अंधाधुंध खर्चा लगा दे हैं, मालूम तो हम देनी हम लक्षण पहचान देनी, इस हिसाब से हमारे जो खर्चा की कटौती भी कम होगी और जो आमदनी है वह भी हमारी शुद्ध होगी, और जो हमारा खेती करने का तरीका है उसका भी हमने मालूम होगा, बेरा पटेगा भाई हमारी फसल हमने कौन सी लगानी चाहिए और इसके साथ साथ जो सहायक धंधे हों कितने लाभदायक हों हैं। तो अब बात होगी खूब भाई भैया ने एक आज शाखा सुनवाऊंगे, गायक कलाकार इसमें रहेंगे श्रीपाल।

0: तो भैया ने सुनया साखा और ईब देख रहे हैं भाई कड़ी कहानी इसी के साथ ही कृषि जगत कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त ही भाई सुनेंगे कार्यक्रम ग्रामीण संसार। आकाशवाणी का यो रोहतक केंद्र और ईब भाई सुनेंगे कार्यक्रम ग्रामीण संसार और इसमें आपकी पसंद भाई शुरुआत करेंगे राजकिशन अगवान प्रिया और साथियों की गायु रागनी के साथ। पसंद करने वाले श्रोता हैं लोको कॉलोनी लोहारू से बिल्लू सिंह चिंडालिया, सुरेंद्र कुमार चिंडालिया, योगेंद्र कुमार चिंडालिया, नरेंद्र कुमार चिंडालिया और श्रीमती लक्ष्मी देवी। इसी रागनी ने भाइयों पसंद करे हैं अली कटबौली से बसंत सिंह, चंद्र राज कुमार, सुनीता, कुलदीप गांधी। भिवानी से श्रोता हैं कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, कुणाल मेहरा और किरण मेहरा। इसी रागनी ने भाइयों पसंद करे हैं खेड़ी चौपटा जिला हिसार से पंडित सत्ता रेड्डी, राजा राम पुनिया, रामेर शर्मा, किताब सिंह शोराण। गांव पांडू पिंडारा जिला जींद से श्रोता हैं बादल सिंह गिल, कमलेश, टीनू, प्रीति, डॉक्टर अंकित गिल। और अगले श्रोता हैं गांव नीमड़ी से श्री जगदीश सिंह, बलमत सिंह, अतर सिंह, सुरेश, कृष्ण कुमार, धर्मा नंबरदार, घोगड़ी देवी, जागेराम, सज्जन कुमार, चरण सिंह, सुपाचंद नंबरदार और बौंद से हैं गीसा व नौरंग। तो सुने भाई अपनी यह पसंद।
1: बोलियारी कान पड़ा लिए जोग

ಆಗ ಮೇಲಮಲ್ಲಿ ಧರಿ ಸರಿ ಮಗನ್ನಾಥನೇ ಬರ್ತೇನೆ ಹರ್ಕಾ.

या तो सुनी बहन राजकृष्ण की गायु रागनी। कार्यक्रम की अगली रागनी बहन सुनवाओगे महावीर चोपड़ा और साथिया की गायु रागनी। पसंद करने वाले श्रोता हैं गांव हिरण छप्पर से जयपाल धीमान, यशपाल धीमान, विनोद कुमार और भुवंश धीमान। इसी रागनी ने भाइयों पसंद करे हैं गांव बाणा ब्रह्मनान से मेघराज शर्मा, योगेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, अजय शर्मा और आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेंद्र शर्मा। जिला जींद में गांव देवरड़ से श्रोता हैं श्री राम चहल, वीर सिंह चहल, मास्टर ओम बलवान, धर्मचंद प्रजापत, दयारमूराम विरागी, बालाराम प्रजापत, मास्टर रघुवीर शर्मा, पंडित मोयामलाल। और अगले श्रोता हैं गांव सांगवान जिला भिवानी से शमशेर सिंह गुजर, पालाराम गुजर, सुमन रानी, रवि कुमार, गुड्डी देवी, पवन ओमगाड़, बलवीर सरपंच। तो सुने भाई अपनी यह पसंद है।

पचीरे हजारी चमके नीचे दमन जोल पड़ी अनहद बिछवे पायल बजे रम झोला की रोल पड़ी ये कड़ी छलकड़े नेवरी पाती पिंड।

कार्यक्रम की अगली रागनी बहन सुनवाओगे राजबाला हैं अपनी पार्टी के साथ। तो पसंद करने वाले श्रोता हैं गांव चौधरी वासी मांगेराम सातोड़, सुनील टेलर, शुभम यस। इसी रागनी ने भाई पसंद कर रहे हैं गांव झोझुकला से विनोद कुमार प्रजापत, अंकित, प्रिया, वंशु, तनिषा, दीपक, सोनू। गांव गैसी बागपत यूपी से चौधरी काशीराम दलाल, बलदेव सिंह आर्य, रामपाल दलाल, दयानंद, रणबीर, नितिन, अर्पित, प्रियांशी, ओमपाल, सनीषा रावत, निमेश नैन, अनुज नैन। ग्राम कस्बा चपरौली बागपत उत्तर प्रदेश से जसवंत सिंह खोखर, राजकुमार खोखर, अनीत खोखर, विनीत और सचिन, मोक्ष, तनुज खोखर। गांव डिकाणा बागपत से जयपाल, जयकुमार और रोहित। इसी रंगन भाइयों पसंद करें हैं आदर्श गांव बलियाली हरियाणा से दर्शन लाल बलसल, सुदेश रानी बंसल, प्रवीण कुमार, ममता रानी,

कमल कुमार बंसल, गर्वीश बंसल महेंद्रगढ़ से हैं, विकास गांधी ममता गांधी सोनू गांधी, और फरूख नगर गुरुग्राम से श्रोता हैं भीम व्यास, सुमित व्यास, और गांव खेड़ी तलवान महेंद्रगढ़ से विजय सिंह लखेड़ा, राजेश मास्टर, प्रकाश अम्बौता। तो सुने भाई अपनी या पसंद।

कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति मैं सुनाऊंगे नरसिंह और साथिया की गायी हुई रागनी। पसंद करने वाले श्रोता रहोंगे गांव चिड़िया दूध वासे जिला चरखी दादरी सोनू संगेलिया मंजीत संगेलिया और तनिष। इसी रागनी ने भाइयों पसंद करे हैं गांव बिरौली जींद से सुरेंद्र सांगवान सचिन सांगवान अंकित सांगवान और गांव फ्रासी से राजकुमार डूडी सरजीत सिंह डूडी प्रमोद कुमार डूडी सौरभ डूडी। लाल मस्जिद भिवानी से श्रोता हैं लक्ष्मी रायण पोपली प्रवीण पोपली अमित बेबी ज्योति तुलसी देवी शीला देवी गीता देवी दीक्षा रानी बेबी नोनी। गांव मटोर जिला कैथल से श्रोता हैं रामदिया नीलम्बोध शिशाई से बोलान अजय टाक विजय टाक रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा सोमनाथ कालिया झज्जर से बिट्टू भाटिया रितू भाटिया मयंक भाटिया रजत भाटिया अलीकाडबवाड़ी से बसंत सिंह छन तो सुने भाई अपनी या पसंद।

या तो सुनी भाया ने नरसिंह और साथिया की गायु रागनी और देख ली भाइयों घड़ी का नहीं कार्यक्रम का समय हो रहा समाप्त चालेंगे सारे भाण भाइया ने राम राम।

अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रामीण संसार। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

मुकेश की आवाज़ में ही आपने सुना आनंद फिल्म का गीत। गीत के बोल रचे थे योगेश ने, संगीत दिया था सलील चौधरी ने। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं सिलसिला फिल्म से। लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन की आवाज़ें हैं। गीत के बोल रचे हैं जावेद अख्तर ने, संगीत है शिव हरी का।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

सिलसिला फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन की आवाज़ों में। इस गीत के बोल रचे थे जावेद अख्तर ने, संगीत दिया था शिव हरी ने। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं कर्ज फिल्म से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीतबद्ध किए इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने।

याराना फिल्म से आपने सुना किशोर कुमार का गाया ये गीत। इस गीत को रचा था अनजान ने, संगीत दिया था राजेश रोशन ने। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला नगमा आपको सुनवा रहे हैं साथ साथ। इस फिल्म से जगजीत सिंह और चित्रा सिंह ने आवाज़ें दी हैं। गीत के बोल जावेद अख्तर के, संगीत है कुलदीप सिंह का।

किशोर कुमार की आवाज़ में आपने सुना कुदरत फिल्म का गीत। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत के बोल रचे थे, संगीत था राहुल देव बर्मन का। आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप तो ऐसे न थे, इस फिल्म का गीत। निदा फाजली ने गीत के बोल रचे हैं, संगीत दिया है उषा खन्ना ने।

मोहम्मद रफ़ी का गाया ये था आप तो ऐसे ना थे। इस फिल्म का गीत निदा फाजली ने गीत के बोल रचे थे, संगीत था उषा खन्ना का। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए जूली फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल, संगीत राजेश रोशन का।

किशोर कुमार की आवाज़ में ये था जूली फिल्म का गीत, आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत था राजेश रोशन का। लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हम किसी से कम नहीं इस फिल्म का गीत। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत के बोल रचे हैं, संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने।

आइए अब सुनते हैं आज के फिल्म संगीत कार्यक्रम का अंतिम गीत, गोलमाल फिल्म से। किशोर कुमार की आवाज़ है, गुलजार के बोल, संगीत है राहुल देव बर्मन का।

गोलमाल फिल्म के इस गीत के साथ ही संपन्न होता है आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं नुसरत फ़तेह अली खान।

0: आइए अब सुनते हैं आज के सुगम संगीत कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।
1: यह गजल सागर सिद्दीकी की पेश कर रहा हूं।

ये थी आज के सुगम संगीत कार्यक्रम की अंतिम गज़ल। सुगम संगीत कार्यक्रम में आज के कलाकार थे नुसरत फ़तेह अली खान। आकाशवाणी का ही रोहतक केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार। इसके बाद ठीक 9 बजे समाचार होंगे अंग्रेज़ी में, जिन्हें रिले किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। और विस्तार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांसद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।

0: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यहीं नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सांसद संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
3: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमरीका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीन फील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
2: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
1: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रूपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
4: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
1: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्लास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमरीका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खमेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खमेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खमेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के।

0: राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 पैराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इको सिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश माघो विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Sanand, Gujarat to strengthen chip manufacturing ecosystem. Prime Minister Modi says India successfully overcame West Asia crisis through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources. Monsoon session of Parliament to be held from 20th of this month to 13th August. India's defence exports reach a record high of over 38,000 crore rupees, says Defence Minister Rajnath Singh. Heavy rain disrupts normal life in many parts of Maharashtra, several rivers in spate. And in men's cricket, India set a target of 191 runs for hosts England in second T20 in Manchester. Vaibhav Suryavanshi becomes youngest debutant in international cricket. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Addressing a large gathering, Prime Minister Modi emphasized that this development is the next step in India's massive electronics revolution, which has already established the country as the world's second largest mobile phone manufacturer. He stated that the CG Semi OSAT facility in Sanand will not only strengthen the domestic chip manufacturing ecosystem, but also boost technological self-reliance and elevate India's position in the global semiconductor value chain.
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को

ये था आज के एक फिल्म से कार्यक्रम का अंतिम गीत। आज की फिल्म थी आशिकी 2। इस फिल्म के गीत रचे थे इरशाद कामिल, मिथुन ने संगीत दिया था, जीत गांगुली, मिथुन और अंकित तिवारी ने। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। रात्रि के 9:30 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, जिसे हम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार, सावन अगर हकीकत है तो आषाढ़ एक कल्पना, ऐसी कल्पना जिसमें भरे होते हैं खुशी के रंग, झीनी बहार, गर्म हवाओं के बीच हल्की सी फुहरन, जैसे तस्वीर खिंचवाने के बाद उसे देखने की त्वरित ललक होती है या कपड़े सिलवाने के बाद उन्हें पहनने की, ठीक वैसे ही आषाढ़ में धरती खुद को आकाश के आईने में निहारने को आतुर रहती है, खूब सजना संवरना चाहती है, बादलों और हवाओं को हरी ओढ़नी सिलने को दे आती है, खूब बतलाना और जतलाना चाहती है, सिद्ध करना चाहती है अपने होने और जग की सार्थकता को। आकाश और धरा के बीच जो रिक्त है, जो दूरी है, उसे पास लाती है, उसे मिलाती है, उसे बुलाती है ये बरखा। सही मायने में ये बरखा ही सार है, आधार है इस संसार सागर का, जीव जगत के अस्तित्व का। बरखा है तो ये कहानी है, बरखा है तो ये रवानी है, कोई इसमें बहुत ज्यादा डूब जाता है तो कोई सारा का सारा प्यासा रह जाता है। बरखा खुले में मैदानों में होती है, मगर घर की बहुत सी खिड़कियों से प्यास झांकती रह जाती है। बशीर बद्र का एक शेर सायास ही याद आ रहा है, जिस बादल की आस में जूड़े खोल दिए सुहागन ने, वो पर्वत से सिर टकरा कर बरस गया सहराओं में। सुनते हैं रूपक, मेघ, मन और मालवा।
3: प्रकृति की लय में आषाढ़ का एक दिन। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूत में लिखा है, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघ मासलिष्ट सानु वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श, यानी आषाढ़ के पहले दिन जब यक्ष ने पर्वत के शिखर पर झुके हुए मेघ को देखा तो उसे ऐसा लगा कि एक हाथी क्रीड़ा में मगन हो टीले से मिट्टी खोद रहा है, तो यक्ष अपनी पत्नी यक्षिणी की स्मृति में व्याकुल हो उठता है और मेघ को ही अपना संदेश वाहक बनाने का निश्चय करता है। कालिदास की ही रचना मेघदूत से प्रेरित होकर मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक

0: लिखा। ये कालजयी कृति आधुनिक हिंदी नाटक की आधारशिला मानी जाती है। आषाढ़ का पहला दिन भारतीय काव्य परंपरा में केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं है, वे मनुष्य के भीतर घटित होने वाले भाव परिवर्तन का भी समय है। उमड़ते मेघ, आकाश में फैलती घटाएं और वर्षा की पहली आहट भारतीय साहित्य में सदियों से प्रेम, प्रतीक्षा, स्मृति और विरह के प्रतीक रहे हैं। कालिदास ने मेघदूत में मेघ को संदेश वाहक बनाया था, ऐसा दूत जो दूरियों को जोड़ता है और स्मृतियों को जीवित रखता है। आधुनिक हिंदी साहित्य में यही प्रकृति बोध एक नए रूप में मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन में दिखाई देता है। इस नाटक में प्रेम, विरह, सृजन और जीवन दृष्टि का संवाद है। प्रकृति है जो पात्रों की मन स्थितियों के साथ चलती है और मालवा का परिवेश है जो पूरे नाटक को संवेदनात्मक धरातल देता है। भारतीय साहित्य में आषाढ़ का महीना विशेष महत्व रखता है। ये केवल वर्षा का आरंभ नहीं बल्कि प्रतीक्षा, स्मृति, प्रेम और विरह का काल भी है। संस्कृत से लेकर हिंदी तक की काव्य परंपरा में आषाढ़ और मेघ मनुष्य की भावनाओं के वाहक रहे हैं। नाटक की शुरुआत ही आषाढ़ का पहला दिन और मूसलाधार वर्षा के साथ होती है। भारी वर्षा में मल्लिका कालिदास के साथ वर्षा विहार कर गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती हुई लौटती है और अपनी माँ से कहती है,
1: आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गईं और मैं भी तो देखो ना माँ कैसी भीग गई हूँ।
0: मल्लिका को भीगने का तनिक भी दुख नहीं होता। वो कहती है, अगर मैं नहीं भीगती तो इस सुख से वंचित रह जाती। वो उस सौंदर्य का वर्णन करती है जो उसकी स्मृति में स्थायी रह जाता है और यहाँ प्रकृति उसके मन की अनुभूति बन जाती है। मल्लिका कहती है,
1: मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघ मालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह रहता है।
0: मल्लिका केवल कालिदास से प्रेम ही नहीं करती, वह उनके भीतर के कवि को भी पहचानती है। इसीलिए जब उज्जैनी से कालिदास को राजकवि बनने का निमंत्रण मिलता है तो एक बड़ा द्वंद सामने आता है। कालिदास का मन तैयार नहीं होता। उन्हें लगता है कि इस गांव, इन पर्वतों, इन मेघों और मल्लिका से दूर होकर कहीं उनका रचनात्मक स्रोत सूख न जाए। मालवा की प्रकृति, आत्मीय परिवेश और मल्लिका, यही तो कालिदास की रचनात्मकता का आधार है। लेकिन मल्लिका अपने प्रेम को बंधन नहीं बनने देती। वह अपने व्यक्तिगत सुख से अधिक कालिदास की रचनात्मक यात्रा को महत्व देती है। वह उन्हें समझाती है कि उन्हें उज्जैनी अवश्य जाना चाहिए। जब कालिदास कहते हैं,
2: फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राजाश्रय स्वीकार करने का ही नहीं है, उससे कहीं बड़ा प्रश्न मेरे सामने है।
1: और वो प्रश्न मैं हूँ ना?
2: तुम पूरी तरह नहीं समझ रही हो मल्लिका, प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। मैं अनुभव करता हूँ ये ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ, उन सूत्रों में तुम हो, ये आकाश और ये मेघ है, यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपाल हैं। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा।
1: विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से अलग नहीं होगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ और यहाँ के हरिन सब तुम्हारे साथ जाएंगे और मैं भी तुमसे दूर नहीं होंगी। जब कभी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी, पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी और उड़ते हुए मेघ

0: उसे घिर जाया करूंगी।
1: कालिदास उज्जैनी पहुंचते हैं, वहां उन्हें यश मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, वैभव प्राप्त होता है, उनका व्यक्तित्व विस्तार पाता है और उनकी पहचान दूर दूर तक स्थापित होती है। लेकिन इसी यात्रा के साथ एक दूसरा परिवर्तन भी घटित होने लगता है। वे धीरे धीरे उस भाव भूमि से दूर होते जाते हैं जहां उनकी सृजनात्मक चेतना ने जन्म लिया था। जिस प्रकृति ने उन्हें संवेदना दी, जिन आत्मीय संबंधों ने उनकी कल्पना को आकार दिया और जिस सहज परिवेश ने उनके भीतर के कवि को जन्म दिया था, वही संसार अब उनसे छूटने लगता है। नाटक का अंतिम भाग इसी गहरी विडंबना को उजागर करता है कि मनुष्य जीवन में उपलब्धियां तो अर्जित कर लेता है, पर कई बार उसी प्रक्रिया में वह उन स्रोतों से दूर हो जाता है जिन्होंने उसके व्यक्तित्व को निर्मित किया था। उल्लेखनीय है कि नाटक की शुरुआत भी आषाढ़ की वर्षा से होती है और अंत भी वर्षा के ही वातावरण में घटित होता है। किंतु जहां आरंभ की वर्षा में उल्लास, प्रेम और संभावनाएं हैं, वहीं अंत की वर्षा में समय, दूरी और जीवन की अनकही रिक्तता का बोध है। इसीलिए आषाढ़ का एक दिन केवल कालिदास की कथा नहीं है, यह नाटक हमें बताता है कि हर बड़ी उपलब्धि के पीछे कुछ ऐसी स्मृतियां और संबंध भी छूट जाते हैं जिनका मूल्य समय बीतने पर अधिक गहराई से समझ में आता है।
2: वही आषाढ़ का दिन है, उसी तरह मेघ गरज रहे हैं, वैसी ही वर्षा हो रही है, वही मैं हूँ, उसी घर में हूँ, किंतु
3: लोग सोचते हैं मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूँ कि मैंने वहाँ रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है वो यहाँ के जीवन का ही संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि ये हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो मलिका, मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह विमर्दिता यक्षिणी तुम हो।
4: मेघ मन और मालवा, अभी आपने ये रूपक सुना। आलेख और वाचन सुश्री भावना झा का था और नाट्य स्वर था नेत्रा और प्रांजल का। साथियों, कहते हैं इंसान कुछ नहीं करता, समय प्रावर्तिक रहकर उसे उस ओर आकर्षित करता है। मोहन राकेश की कृति आषाढ़ का एक दिन विवेक, आत्मबोध और अनुभव जैसे बिंदुओं पर मौन रहकर भी बहुत कुछ कह जाती है, चिंतन के नए द्वार खोल जाती है और यथार्थ कुछ कुछ तत्कालीन समाज को आगाह करता है। लेकिन एक सीढ़ी नीचे उतरा जाए तो वहाँ एक ऐसी पीढ़ी दिखाई देती है जो जड़ता, बंधन, दमन और शोषण में लिपटी हुई है। निराशा के बीच वहाँ कोई उम्मीद भी नहीं। साहित्य के हर अनुयायी ने किसी न किसी मोड़ पर प्रेमचंद को अवश्य पढ़ा है। सब कुछ न सही, पर बहुत कुछ जरूर पढ़ा है। कुछ ऐसा भी है जो नहीं पढ़ा होगा। आइए ऐसी ही कुछ रचनाओं पर चर्चा करते हैं वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से। आपसे बातचीत कर रही हैं युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा।
5: 31 जुलाई को महान कथाकार साहित्यकार प्रेमचंद की जयंती है और प्रेमचंद जैसे बड़े और प्रसिद्ध लेखक की कुछ रचनाएं जो कालजयी हो गई, मगर ऐसी भी बहुत सी रचनाएं हैं जिनका जिक्र कम होता है या जिनको एक आम पाठक द्वारा या कुछ खास पाठकों द्वारा भी कम पढ़ा गया है, हालांकि वो बहुत अच्छी रचनाएं हैं अपने कथ्य में, अपने प्रभाव में। प्रेमचंद कुछ अनपढ़े कुछ अनसुने, इस विषय के इर्द गिर्द आज हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो पहला सवाल वो ये है कि कुछ रचनाएं जो इतनी लोकप्रिय हो गई कि उनकी पहचान ही

0: बन गई। तो क्या इसी लोकप्रियता ने उनकी अन्य उत्कृष्ट रचनाओं को पाठकों की दृष्टि से ओझल कर दिया?
1: देखिए, ओझल कर दिया शायद ज्यादा बड़ा एक बयान होगा, और वैसे एक हद तक तो ये देखिए होता ही है कि किसी भी रचनाकार ने अगर प्रचुर मात्रा में लिखा है तो उस प्रचुर मात्रा में लिखी गई रचनाओं में से कुछ रचनाएं अधिक चर्चित होती हैं, किसी समय विशेष में ज्यादा चर्चित होती हैं। समय बदलता है, युग के मानदंड और मान्यताएं बदलती हैं, आवश्यकताएं बदलती हैं, मनुष्य के सरोकार बदलते हैं, तो उसके साथ साथ कई कहानियां, कई रचनाएं, कई कविताएं, कई उपन्यास फिर से वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, फिर से प्रकट हो जाते हैं। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आपकी साहित्य में रुचि है और आपको साहित्य पढ़ने में सुख मिलता है और उससे आप कुछ समृद्ध होते हैं, तो हर साहित्यकार की और खासतौर से खूब लिखने वाले साहित्यकारों की जो बहुत चर्चित रचनाएं हैं, उनके अलावा भी कई रचनाएं होती हैं जिनको पढ़ने से आप समृद्ध होते हैं, और उनकी रचना धर्मिता के बहुत सारे ऐसे पहलू आपके सामने आते हैं जो कुछ रचनाओं विशेष पर अगर आप केंद्रित बने रहें तो उतने प्रकट नहीं होते हैं।
0: वो रचनाएं भी बहुत इजाफा करती हैं अगर
1: इजाफा
0: आप
1: करती
0: उसको। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि प्रेमचंद की ऐसी कौन सी रचनाएं हैं जिनका साहित्यिक मूल्य आपकी दृष्टि में बहुत ऊंचा है लेकिन कम पढ़ी गई या कम चर्चित है या बिल्कुल ही अनदेखी रह गई?
1: देखिए, बिल्कुल अनदेखी रह गई वाली बात तो थोड़ी कठिन होगी, क्योंकि प्रेमचंद का जैसे मानसरोवर है जिसमें उनकी कहानियां संग्रहित हैं, और बहुत सारी कहानियां हैं, उन सारी कहानियों की चर्चा तो शायद एक बातचीत में एक आदमी के द्वारा करना लगभग असंभव ही होगा। एक संयोग है, मेरी स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश में हुई, और ये दौर था, ये 1960 के दशक का अंत था, और उस समय उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में हिंदी के विद्यार्थियों के लिए एक पुस्तिका हुआ करती थी जिसमें प्रेमचंद की ऐसी कहानियां थीं जिनको बाल मनोविज्ञान के साथ जोड़ करके ज्यादा बच्चों के लिए जिनको अनुकूल माना जाता था, और प्रेमचंद की कई कहानियां एक साथ पढ़ने का जो सौभाग्य था वो उससे शुरू हुआ। उसमें जहां तक मुझे याद है कि कफन शायद नहीं थी, सबसे चर्चित कहानियों में कफन है, पूस की रात है, लेकिन कई कहानियां थी जो बहुत चर्चित हैं और सब जानते हैं, ईदगाह जैसे महान कहानी है और ईदगाह उसमें थी। हाँ, एक कहानी और जो बहुत लोकप्रिय भी है और मुझे बहुत प्रिय है, बड़े भाई साहब, जिसमें अगर आप पढ़ें तो शिक्षा की बात है लेकिन साथ साथ मनोविज्ञान भी है, अद्भुत कहानी है। अगर इससे हम जोड़कर देखें तो मुझे एक कहानी जो बहुत प्रिय है वो गुल्ली डंडा है। इस कहानी में ये है मूल रूप से कि एक आदमी है जो अब किसी कस्बे में रहता था बचपन में, वहां उसका बचपन बीता है, और अब वो बाद में उसके पिता का ट्रांसफर हो गया, वो थोड़ा ठीक ठाक समृद्ध घर का था, वो इंजीनियर बन गया, और बहुत साल बाद उस अपने कस्बे में लौट गया है। अब वो याद कर रहा है तो उसमें उससे मीठी याद है वो गुल्ली डंडा के खेल की है, और फिर उसके जो रोमांच का वर्णन करते हैं, पर गुल्ली डंडा का पूरा जो आनंद होता है, लेकिन साथ साथ एक सामाजिक चेतना अपने आप आती है, और कहा जाता है कि हिंदी में ऐसी कहानियों की कमी है जिनमें खेल का, विज्ञान का, ऐसे विषय जो है अपेक्षाकृत कम आते हैं। तो ऐसी ही अगर आप प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी, आप जो कि बड़ी काफी प्रसिद्ध कहानी है, पर उसमें भी आप याद करें कि भारतीय ढंग के शतरंज में प्यादे किस तरह चलते हैं और विलायती शतरंज में कैसे चलते हैं, इसको वो कहानी की विकास में और कहानी के मर्म के बयान में इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि सिर्फ शतरंज का ही नाम नहीं रख दिया है। ऐसी एक कहानी जो मुझे याद आती है जिसमें बाल मनोविज्ञान की ही अगर बात करें तो रामलीला कहानी। रामलीला कहानी हमारे आज के समय में मुझे लगता है बहुत ही सार्थक और प्रासंगिक है। अब इस कहानी में क्या है कि रामलीला हो रही, अच्छा शुरुआत इससे होती है कि वो आदमी जो कहानी लिख रहा है वो फिर वही मामला है कि वो बूढ़ा हो चला है, और लिखते हैं कि अब जब मैं लोगों को खोटे लगाकर और हु करते दौड़ता हूँ तो कई बार हंसी आती है, पर बचपन में लगता था कि उसका जादू था, उसका रोमांच था, और फिर लिखते हैं कि मेरे बगल वाले घर में ही वो मेकअप हुआ करता था, और जिसमें वो सीता का मेकअप और तमाम देवियों का मेकअप और उनपे बूंदियां चिपकाना और रज पीस करके लगाना उनके ऊपर जो पाउडर, और मैं बहुत उत्साहित रहता था, और जब राम का और सीता लक्ष्मण का रथ निकलता था तो राम के पीछे खड़े होते थे, और लिखते हैं कि मुझे ये लगता था कि जो आनंद उसमें आता था वो लाट साहब के चैम्बर में बैठकर भी नहीं आया। मतलब लाट साहब उस जमाने में जो ब्रिटिश टाइम था, हम जानते हैं कि प्रेमचंद चले गए 8 अक्टूबर 1936 को। यहाँ तक तो कहानी बच्चे की है, लेकिन उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है कि रामलीला का मंचन हो चुका है लगभग, और अब स्थिति यह है कि उसमें चर्चा चल रही है कि जो कराने वाले लोग हैं, जो कमेटी है, जो जमींदार साहब हैं, कि चढ़ावा कम आया है, तो मतलब ये कि जो मुनाफा होता था, जो कमाई होती थी रामलीला के जरिए, वो उतनी हो नहीं पाई, तो उसकी भरपाई कैसे की जाए। तो भरपाई के लिए अंत में ये होता है कि कोई नाचने वाली एक महिला है, उनको बुलाया जाता है, और फिर उनको ये काम दिया जाता है कि अपनी अदाओं से आप लोगों से कुछ पैसे निकलवाइए, और वो निकलवाती हैं, और उसमें होता ये है कि बालक जो कहानी कह रहा है, इस बालक के पिता पुलिस में हैं और बड़े कड़क आदमी हैं,

0: तो इससे भी वो मांगती हैं कुछ पैसे दीजिए इस तरह का, तो लोग कहते हैं कि इनसे तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, तो वो बड़े गुस्से से देखते हैं और निकाल के कशरफी दे देते हैं। इनको बड़ी शर्म भी आती है कि मेरे पिताजी जो हैं वो यहाँ आकर के इस तरह पैसे दे रहे हैं। अगले दिन स्थिति ये होती कि राम सीता और लक्ष्मण रो रहे हैं, मतलब वो बच्चे रो रहे हैं जो उनका अभिनय करते थे, और राम का अभिनय करने वाला जो बच्चा है वो उनको समझा रहा है। तो बताते हैं कि इस बार जमींदार साहब ने कुछ दिया नहीं, कहा कि बहुत कम आमदनी हुई है, आगे कभी ले जाना, रास्ते के लिए भी कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करें कैसे जाएं सोच रहे हैं। तो ये पिताजी से पैसे मांगने जाता है कि आप 2 रुपए दे दीजिए तो उन लोगों को दे दूं, तो वो नहीं देते। अब यहाँ बाल मनोविज्ञान का एक रूप देखिए। उस दिन से मुझे अपने पिता से ऐसी चिढ़ हो गई कि जीवन में उनके किसी सीख को फिर मैंने माना ही नहीं। इससे मेरा नुकसान भी हुआ, लेकिन मेरे अंदर ऐसी एक जुगुप्सा पैदा हुई कि आप उस नाचने वाली को अशरफी देने को तैयार थे लेकिन इन बच्चों को आप नहीं दे सके। और फिर वो कहते हैं कि मैं कहीं से, मुझे 2 आने कहीं पड़े थे या मिल गए, और वो जाकर माँ से मांग के या कहीं से 2 आने दिए। यानी एक कहानी का वो एक सिरा उठाते हैं और उस सिरे से वो उसे कहां तक ले जाते हैं। कई कहानियां और दिमाग में घूमने लगी। प्रेरणा कहानी याद आ रही है, एक बच्चे की कहानी जिसको अपने शिक्षक से प्रेरणा मिली। ये सही है कि ज्यादा चर्चा के केंद्र में वही कहानियां रहती हैं जो बहुत चर्चित हैं और होनी भी चाहिए। मतलब यहाँ पर मैं इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ।
1: तो जहाँ आप होनी भी चाहिए, जहाँ आप कह रहे हैं, वहाँ एक सवाल मन में आता है कि क्या जिन रचनाओं को हमने मान लिया है कि जो बहुत चर्चित हैं, बहुपठित हैं, उनमें और जो दूसरी और रचनाएं जिनका भी आप जिक्र भी कर रहे थे उदाहरण सहित, तो क्या उनमें अपने कथ में, अपने प्रभाव में या उनकी अपनी शैली में, रचने की शैली में कुछ मूल अंतर है?
0: नहीं, अंतर नहीं है, विस्तार है। मुख्य बात यह है कि प्रेमचंद का एक तो विकास हुआ लगातार। प्रेमचंद ने बिल्कुल सामान्य किस्सा गोई से शुरू किया और वो निखरते चले गए। प्रेमचंद जो हैं, उनकी जो आखिरी दौर की कहानियां हैं, कफन है या पूस की रात है, ये उनकी सबसे महान कहानियां मानी जाती हैं। उनका अंतिम पूरा जो उपन्यास है वो गोदान है, जो उनका महानतम उपन्यास माना जाता है। और सच्चाई ये है कि उनका वैचारिक विकास भी हुआ। वो एक किस्सा गोई से आगे बढ़े, अपने समय से प्रभावित थे, आदर्शवादी चेतना के साथ आगे बढ़े, हृदय परिवर्तन बहुत होता था उनकी कहानियों में। लेकिन ये है कि प्रेमचंद के यहाँ हमें क्या मिलता है, आपने पूछा, वो ये मिलता है कि जब आप कुछ कहानियों पर ही केंद्रित रहते हैं तो आपको एक वानगी मिलती है उनकी कहानी कला की, उनके सरोकारों की। जब और कहानियां पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि जीवन के इतने सारे तमाम पक्ष और हैं। प्रेमचंद उतने तक ही नहीं थे, वो सामाजिक यथार्थवाद की चेतना, सामाजिक प्रतिरोध की चेतना, बदलाव की चेतना, आजादी की लड़ाई का हिस्सा, मजदूरों किसानों के हकों के लिए लड़ने वाले। तो वो आप देखें कितनी चीजें हैं जो आपको लगता है कि बिल्कुल आपके आसपास घट रही हैं। इसको देखने के लिए आपको पढ़ना चाहिए कि कितने तरह से जीवन को उन्होंने देखा, उस पर विचार किया। प्रेमचंद ने ही कहा है कि सच्चा साहित्यकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है और साहित्य जो है राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है, उनके वाक्य हैं। लेकिन यह है कि मनुष्य से और सृष्टि से बहुत गहरा और आत्मीय प्रेम किए बिना आप साहित्यकार नहीं हो सकते, कलाकार नहीं हो सकते, अच्छे मनुष्य नहीं हो सकते। और प्रेमचंद के यहाँ उनकी कहानी कला में कितने व्यापक स्तर पर, कितनी सूक्ष्मताओं के साथ हमारा संसार, हमारा जीवन मिलता है, जो तब था और जो आज 9 दशक बाद भी प्रेमचंद हमारे पुरोधा हैं और हमारी उंगली पकड़कर हमें ले चल रहे हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतने विस्तार में प्रेमचंद की कहानियों के बारे में हमारे श्रोताओं को अवगत कराया आपने।
2: ये भी प्रेमचंद, अभी आप इस विषय पर वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से बातचीत सुन रहे थे। आपसे बातचीत कर रही थी युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा। साथियों, प्रेमचंद का युग यकीनन वैसा ही रहा होगा जैसा उनकी कृतियों में है, पर देश को आजादी मिलते ही सब कुछ न सही पर बहुत कुछ बदला। राष्ट्रीय धारा के कवियों की चेतना प्रस्फुटित हुई। अतीत और तत्काल के महासंगम की ज्वाला ने देशभक्ति, एकता और अखंडता के नए सूत्र रचे। आइए उस धारा के महत्वपूर्ण कवि रामधारी सिंह दिनकर की राष्ट्रभक्ति और शक्ति पर एक वार्ता सुनते हैं। दिनकर राष्ट्र के हितकर वार्ताकार हैं, वरिष्ठ लेखक, स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी।
3: भारत के स्वाधीनता संग्राम में जो भारत के और भारतीय भाषाओं के, विशेष रूप से हिंदी के कवियों ने जो योगदान दिया, उसमें एक लंबी चौड़ी सूची है। माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सोहनलाल द्विवेदी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान है, और इसमें एक नाम है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर न सिर्फ राष्ट्रीय भावना के कवि हैं, बल्कि उनकी वाणी में और उनकी लेखनी में जो ओज था, वो अद्भुत ओज था और मंचों पर जिस तरीके से वो कविता का गायन किया करते थे उस समय मुझे लगता है कि शायद सचमुच लोगों की भुजाएं फड़कने लगती होंगी।

0: दुख से नहीं, विवश उड़ने के पंख नहीं होने से, और मूक इसलिए कि उनके कंठ नहीं खुलते हैं। सोचा है यह कभी कि गूंगापन कैसी पीड़ा है, भीतर भीतर दर्द भोगना लेकिन बटा न पाना, उसे किसी से कहकर मेरे मन को चोट लगी है, बोल नहीं सकता जो उसका भी दुख कोई दुख है। कितने लोग समझते हैं भाषा उदास आंखों की।
1: आप लोगों को हैरत होगी कि रामधारी सिंह दिनकर 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बारदोली में किसान आंदोलन कर रहे थे उसके संदर्भ में उस समय जब विजय संदेश रामधारी सिंह दिनकर कविता लिखते हैं तो उस कविता को पढ़ करके आज भी भुजाएं फड़कने लगती हैं। और वो दृश्य सामने आ जाता है कि जब सरदार पटेल ने बारदोली के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था और उसमें ब्रिटिश सरकार को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। मैं आपको उनकी चार लाइनें सुना सकता हूं और अद्भुत आपको आनंद आएगा उस कविता को सुनने में। तेग तोप तलवार उधर थी, इधर निरीहों की थी आह, उधर मिटा देने की धुन थी, इधर प्रबल मिटने की चाह, इधर उठी हुंकार सृष्टि सारी वह डावा डोल हुई, प्रलय कारणी ध्वनि जनसत्ता की अतिशय अनमोल हुई, ठोक ताल दुंदुभी बजा शासन की हस्त हिलाई है, वीर बारदोली वालों की गाओ विजय बधाई है। निरे निहत्थे हैं पर क्यों डर जाएं तेरी फटकारों से, गगन गून जाएगा भीषण सहस हुंकारों से, दमन जेल से डरे कौन पाशवी शक्ति में क्यों भूला, भारतीय बच्चे झूलेंगे फांसी का प्यारा झूला, बलिवेदी पर चढ़कर जग में अनुपम कीर्ति कमाई है, वीर बारदोली वालों की गाओ विजय बधाई है। और एक कविता नहीं, उनकी लंबी कविताओं की ऐसी सूची है जो बार बार जहां पर वो इस तरीके की बात करते हैं। और जिस तरीके से फांसी के फंदों पर झूल जाने वाले हमारे क्रांतिकारी थे, शहीद थे, उनके लिए ये कविताएं एक ऐसा संजीवनी का काम करती थीं कि उन कवियों की कविताएं पढ़ करके लोग भारत के स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़ते थे। रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मिरथी जैसी काव्य कृति लिखी और न सिर्फ राष्ट्र के स्तर पर वो जिस तरीके से समाज में भी बात करते हैं, जाति जाति रटते केवल जिनकी पूंजी पाखंड, मैं क्या जानू जाति जाति हैं ये मेरे भुजदंड। एक कविता और मैं आपको सुनाना चाहूंगा, 1945 में ये कविता लिख रहे हैं। हा भारत की लाल भवानी, जवा कुसुम के हारों वाली, शिवा रक्त रोहिणी वसना कबरी में लाल सितारों वाली, कर में लिए त्रिशूल कमंडल दिव्य शोभनी सुरसरी स्नाता, राजनीति की अचल स्वामिनी साम्य धर्म ध्वज धर की माता, भारत भूमि के मिट्टी से श्रृंगार सजाने वाली, चढ़ हिमाद्री पर विश्व शांति का शंख बजाने वाली। 1945 के आसपास ना एक बहुत बड़ा ये चल रहा था कि राष्ट्रीयता क्या होती है और राष्ट्रीयता कहीं अंतर्राष्ट्रीयता में बाधित तो नहीं होती, इसलिए रामधारी सिंह दिनकर भारत भूमि पर भारत के स्वाधीनता आंदोलन की आवाज बुलंद करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को उस देश के रूप में स्थापित करते हैं जो विश्व शांति की बात करता है। जिस समय भारत परतंत्र था उस समय ये बात कहना बड़ा मुश्किल था, लेकिन दिनकर जी ने बात कही। जयप्रकाश नारायण रामधारी सिंह दिनकर जी से बहुत अधिक प्रभावित थे, उस समय उनकी कविता बड़ी प्रसिद्ध हुई, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दिनकर जी ने कुछ साम्यवादी स्वभाव की भी कविताएं लिखी और गांधी जी पर भी कविताएं लिखी उन्होंने, लेकिन खुद उन्होंने कहा ये कि मैं जीवन भर गांधी और मार्क्स के बीच में झटके खाता रहा हूं, इसीलिए उजले को लाल से गुणा करने पर जो रंग बनता है वही रंग मेरी कविता का रंग है, वही रंग केसरिया रंग, वो रंग उन्होंने कहा। और स्वयं ये किसी आलोचक ने नहीं कहा, किसी दिनकर जी के पाठक ने नहीं कहा, स्वयं दिनकर जी स्वीकार करते हैं। 1965 के युद्ध के समय सैन्य शिविरों में वो कविताएं गाई जाती थी और दिनकर की अन्य अन्य कविताएं जो हैं सैनिकों के लिए शिविरों में, वहां के आम आदमी जो थे जब गांवों से सेनाएं निकलती थी तो दिनकर जी की कविताएं गा गा करके सैनिकों का उत्साह बढ़ाया जाता था। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको रश्मिरथी पूरी याद है, परशुराम की प्रतीक्षा से वो उद्धृत करते हैं, क्षमा क्षोभती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो। ये कविता की लाइन ऐसी है जो आम तौर पर तब से पिछले 50, 60, 70, 80 वर्षों से लेकर के आज तक जो है लगातार उद्धृत की जाती है, मुहावरा बन गई है, अपनी बात को कहने का अंदाज बन गया है। दिनकर जी की कविताएं जो है, श्वानों को मिलता दूध दही, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, ये कविता की पंक्तियां ऐसी हैं जो आम आदमी के मुंह पर, आम आदमी की जुबान पर आती हैं। अपनी बात को कहने के लिए दिनकर जी की पंक्तियों का उदाहरण दे करके जिस तरीके से अपनी बात को यहां पर पुष्ट किया जाता है या स्पष्ट किया जाता है, ये वास्तव में कवि दिनकर की वो सार्थकता है या वो उनकी सफलता है जो शायद हर कवि को नहीं मिलती। दिनकर जी की बहुत प्रसिद्ध कृति है उर्वशी, अपने समय का सूर्य हूं मैं। जब दिनकर जी इस तरीके की पंक्ति पढ़ा करते थे तो समूचा मंच जो है अनगिनत तालियों से भरा रहता था। एक लंबी उनका काव्य नाटक जिसमें चंद्रगुप्त के बारे में

0: सेल्यूकस का उदाहरण देते हैं वो कि सेल्यूकस आपने आकर के हमें बहुत अच्छा किया कि हमें अपने आत्मगौरव का भान करा दिया।
1: वो लिखते हैं, भारत भूमि है एक, हिमालय से आसेतु निरंतर, पश्चिम में कंबोज कपिश तक उसकी ही सीमा है। किया कौन अपराध गए जो हम अपनी सीमा तक, अनाहूत हमसे लड़ने को क्यों सेल्यूकस चढ़ आया। मदोन्नमत यूनान जानता था न मगध के बल को, समझा था वह हमें छिन्न शायद पुर के कैसा। वह कलंक का पंख आज धुल गया देश के मुख से, हम कृतज्ञ हैं सेल्यूकस ने अवसर हमें दिया है। दिखा दिया पूरे विश्व को भारत की उस आत्मगौरव का व्यक्त करने का अवसर दिया सेल्यूकस ने। वीर सिकंदर के गौरव का प्रतिभू सेल्यूकस था, आज खड़ा है वह विपन्न आहत सा मगध सभा में। उस बलिष्ठ शार्दूल सदृश निष्प्रभ हत तेज अकिंचन, पर्वत से टकराकर जिसने नखरद तोड़ लिए हों, उस भुजंग सा जिसकी मणिमस्तक से निकल गई हो। तो ये है रामधारी सिंह दिनकर।
2: दिनकर राष्ट्र के हितकर। अभी आप ये वार्ता सुन रहे थे। वरिष्ठ लेखक, स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी की इस वार्ता के साथ ही हम अमित घोष, उमा शंकर जोशी, अजीत कुमार, महाश्वेता देवी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, गोपाल दास नीरज, कुंवर बेचैन, कन्हैया लाल नंदन की स्मृति को नमन करते हुए आपसे यहीं विदा लेते हैं। वाचन स्वर नीलम मलकानिया, प्रस्तुति सहयोग वंदना, आलेख और प्रस्तुति

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग का वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन।
2: अध्याय ने बड़ी ही छोटी उम्र में मंच पर कदम रखा। केवल 7 वर्ष की आयु में सन 1979 में कोलकाता में आयोजित सुरेश संगीत सम्मेलन में उस्ताद अमजद अली खान के साथ आपको कार्यक्रम प्रस्तुत करने का सुयोग प्राप्त हुआ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के टॉप ग्रेड के कलाकार होने के साथ साथ आप संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तहत ICCR के सूचीबद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ भी हैं। आज की पीढ़ी के सुविख्यात ख्याल गायकों की श्रेणी में आपका नाम शामिल है। किराना घराना की पारंपरिक पहचान को अक्षुण्ण रखते हुए पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय अपने ख्याल और ठुमरी की प्रस्तुतियों में अद्भुत सुंदर गायकी का मिश्रण करते हैं, जो आपकी पेशकश को रंगदार और लोकप्रिय बनाता है।
3: Tonight in the National Program of Music, we present Khayal Recital by Pandit Arnob Chattopadhyay, the musical heritage initiated by Ustad Abdul Karim Khan and Ustad Abdul Wahid Khan. The doyens of Kirana Gharana has meandered through the ages and is still survived by a few vocalists such as Pandit Arnob Chattopadhyay. Born and groomed in a musical ambience in the suburban town of Boshirhat near Kolkata, Pandit Arnob Chattopadhyay was initiated into the world of music at a tender age of 5 years by his father, Sangeetacharya Sri Arun Kumar Chattopadhyay. Later, he was trained in classical music by such stalwarts as Pandit A. Kannan, Vidushi Malabika Kannan and Ustad Mashkur Ali Khan. Pandit Arnob Chattopadhyay flowered into a young performer very early in his life. At the age of 7 only, he shared the stage with Ustad Amzad Ali Khan at the Suresh Sangeet Sammelan, Kolkata in the year 1979.

0: गायन के अंतर्गत आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग यमन सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग हमीर। यह बंदिश पहले मध्य लय तीन ताल तत्पश्चात द्रुत एक ताल में आबद्ध है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग यमन इन द ख्याल रिसाइटल बाय पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। ही नाउ प्रेजेंट्स राग हमीर, the composition of which is set to Madhyalaya Teen Tal followed by Drut Ek Tal.

0: पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग हमीर सुन रहे थे। खयाल गायन की इस प्रस्तुति का समापन आप राग वाचस्पति के साथ करेंगे। यह बंदिश मध्य लय तीन ताल और द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग हमीर। पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय कंक्लूड्स हिज खयाल रिसाइटल विथ राग वाचस्पति। The composition of the rag is set in Madhyalaya Teen Taal and Drut Teen Taal.

काल गायन के इस कार्यक्रम में आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग वाचस्पति सुन रहे थे। आपके साथ संगत कर रहे थे तबले पर इमोन सरकार, हारमोनियम पर कमलाक्ष मुखोपाध्याय और तानपुरा पर कोयल शाहा। और इसी के साथ आज रात संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष देश के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न भागों में लगभग 54,000 नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य

0: Series at Old Trafford in Manchester. India set a target of 191 runs for England. In reply, England scored 191 runs for 6 in 19 overs. Opting to bat first, India posted 190 runs for the loss of 7 wickets and they allotted 20 overs. Jacob Bethell was declared player of the match. And that's the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। हमारे आज के प्रसारण अब संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे कल सुबह 5:55 पर मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।